FM के 101.7 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, भाद्रपद माह की तिथि 2, तदनुसार 24 अगस्त ईस्वी सन 2026। इस समय

0: FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का, तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्षेत्र के स्टार्टअप्स सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ। भारत की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जाए राष्ट्रीय शामिल विभिन्न सुरक्षा बलों, पुलिस 50 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित समकालीन चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरू जिले के मुसुनुरू गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरू में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित GMO उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, SDRF और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। SDRF के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर

0: निकाल दिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
2: हमें ऐसा एक aura खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: मिस्टर मोदी स्टेटेड दिस ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद द सीईओज एंड फाउंडर्स ऑफ 20 स्पेस स्टार्टअप्स रिसेंटली। अकॉर्डिंग टू द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द इंटरेक्शन व्हिच वाज रिलीज्ड ऑन नेशनल स्पेस डे यस्टरडे, प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो हाइलाइटेड इंडियाज कॉस्ट कंपेटिटिवनेस इन लॉन्चिंग स्पेस वेंचर्स। During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. Union Home Minister Amit Shah will attend the 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. The Ministry of Tribal Affairs will organize a 3-day national conclave on tribal languages and museums from today till Wednesday in Mysuru, Karnataka. The conclave will bring together a national dialogue on documentation, preservation, and revitalization of tribal languages. The event will strengthen tribal museums and tribal freedom fighter museums across the country. The national conclave advances the Prime Minister's roadmap for a Viksit Bharat 2047, under which reviving India's traditional knowledge systems and ensuring no community is left behind remain key pillars of inclusive national development. The conclave will be inaugurated by Union Minister of State for Tribal Affairs, Durga Das Uike. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar reached Moscow on a 2-day official visit to Russia. During the visit, the minister will co-chair the 27th session of the India-Russia Intergovernmental Commission on Trade and Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation. He will also meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchange perspectives on regional and global issues. The Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache, and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. In cricket, India will resume their first innings at the overnight score of 300 for 5 against hosts Sri Lanka in the second and final test in Colombo today. Earlier, Dhruv Jari

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज के कलाकार थे रविंद्र साठे और साथी संगीत था सतीश भाटिया का। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

गायक कलाकार लता मंगेशकर और साथियों के सुरों में आपने सुना ये भक्ति गीत। आइए कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफी के सर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और उदित नारायण के और साथियों के स्वरों में गाई हुई ये भक्ति रचना।

इस भक्ति रचना के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम समर्पण।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। आइए, वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं को हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दे। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि सुबह के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार मौसमी नियोगी को। सुबह के 7 आप आनंद लेंगे आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का। प्रातः के 8 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सुबह के 8:40 पर आप आनंद लेंगे लोक गीतों के कार्यक्रम माटी की महक का। आज इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे उराव लोकगीत कलाकार सुकरा भगत और उनके साथियों के स्वरों में। कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह के 9 का। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह के 9:30 का। माफ कीजिएगा, इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे पूर्वाह्न के 10। पूर्वाह्न के 10:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 1:20 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। दोपहर के 2:55 पर प्रसारित होंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक

तहत आप सुनेंगे एक ही गायक कलाकार के स्वरबद्ध चंद चुनिंदा नगमे। कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या के 5:30 का। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और 6:02 पर हम आपके साथ होंगे क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम हो अखड़ा को लेकर। संध्या के 6:30 पर प्रसारित होगा हमारे युवा दोस्तों को संबोधित साप्ताहिक कार्यक्रम युवाणी। संध्या 7 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप आनंद लेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय रहेगा रात्रि के 8 बजे का। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। रात्रि के 10 बजे का प्रसारण समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम महफिल का। 10:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। रात्रि के 11 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं आज का अगला कार्यक्रम, कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही गायक कलाकार मौसमी नियोगी को।

श्रोताओं, गायक कलाकार मौसमी नियोगी के स्वर में गाई हुई इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी सुबह के 7 बजा रही है और साथ ही साथ कर रही है ये इशारा कि वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चायबासा।

कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। आइए श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म आपकी कसम से।

श्रोताओं, बाहर रिमझिम बारिश की बूंदें गिर रही है और हमारे स्टूडियो में सुहाना मौसम अपनी ताजगी बिखेर रहा है। खिड़की के पार गिरती यह नन्ही बूंदें कह रही है कि काम की भागदौड़ को थोड़ा थामिए, एक कप गर्मा गर्म चाय उठाइए और अपने पसंदीदा धुनों में खो जाइए। सुनिए मौसम का ये खास मिजाज सिर्फ आपके इस कार्यक्रम जोहार चाय बाजार में।

श्रोताओं, मौसम के द्वारा दिए गए इस खास तोहफे के साथ खिड़की के बाहर रिमझिम बूंदों की धीमी ताल है, हवा में मिट्टी की वो सौंधी खुशबू है और हाथ में आपके गरम चाय की भाप है। इसके साथ बेहतर सुबह की आगाज और क्या ही हो सकती है। श्रोताओं, अब आपकी सुबह की शुरुआत कीजिए, मुस्कुरा कर कीजिए आज के हमारे इन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये सदाबहार गीत फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन है आरडी वर्मन की और गीतों को सजाया है अपने आवाज़ों से कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने।

श्रोताओं, आसमान पर छाए काले बादलों ने शहर का मिजाज बदल दिया है और ऐसे मौसम में इस गीत से बेहतर भला क्या ही हो सकता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा गायक कलाकार साधना सरगम और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में फिल्म अनजाने से। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने और धुन है राजेश रोशन की।

श्रोताओं, बाहर रिमझिम बारिश की फुहारे हैं और हवा में वो भीगी भीगी ताजगी है। बादलों की हल्की छाओं के बीच जब नई सुबह दस्तक देती है तो मानो प्रकृति का हर कोना

होना मुस्कुराने लगता है। दिल चाहता है कि गुनगुनाती हवाओं और खिली हुई कलियों की तरह हमारी यह सुबह भी महक उठे। तो आइए अपनी इस सुबह की खास शुरुआत को और भी हसीन बनाते हैं इस सदाबहार नगमे के साथ। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आराधना से। इस आवाज़ें हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन है एसटी फरमन की।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की सुरीली आवाज़ों में रचा बचा यह खूबसूरत गीत। इस बारिश की इस रिमझिम सुबह में श्रोताओं, इस गाने की धुन सीधे ही दिल को छू जाती है और पूरे दिन के लिए आपको एक ताजी सी मुस्कान दे जाती है। इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म धरती कहे पुकार के से। इस गीत

श्रोताओ, सूरज भले ही बादलों के पीछे छिपा हो, लेकिन बारिश की हर बूंद आपकी सुबह में एक नई ताजगी घोल रही है। और इस ताजगी के साथ ही आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा, फिल्म मेरे हमसफर से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार महेंद्र कपूर और बलवीर की।

0: सुना गायक कलाकार महेंद्र कपूर और बलवीर के स्वरों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन थी कल्याण जी आनंद जी की। और इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम जोहार चायबासा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। श्रोताओं, जब बात बारिश की हो और जब बात हो सावन के महीने की, तो इस गीत के बिना हमारा ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। बाहर सावन की रिमझिम फुहारे और रेडियो पर रिमझिम गिरे सावन, इस सुहानी सुबह के लिए इससे बेहतर जोड़ी और क्या हो सकती है श्रोताओं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म मंजिल से। इस गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने और धुन है राहुल देव वर्मन की।

श्रोताओं, बाहर रिमझिम बारिश की फुहारें हैं और बादलों से ढका ये खूबसूरत नज़ारा। ऐसी भीगी और ताज़ा सुबह में जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो लगता है मानो पूरा शहर किसी हसीन वादी में बदल गया हो और मन चाहता है कि इस खुली हवा में खुलकर सांस लें और इस मौसम में खो जाएं। तो आइए अपनी इस सुबह को थोड़ा और जादुई बनाते हैं और सुनते हैं ए आर रहमान के इस महसूर और सदाबहार नगमे को उनकी इस आवाज़ के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रोजा का यह बेहद खूबसूरत नगमा। और इस नगमे के साथ ही श्रोताओं, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हमारे आज के इस खास कार्यक्रम का से विदा लेने का वक्त हो चला है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सुबह आज के इस कार्यक्रम के गीतों ने आपकी सुबह में एक नई ताजगी भर दी होगी। बारिश के इस सुहाने मौसम में आप अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें। सड़कों पर गाड़ी थोड़ी धीरे चलाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, एक जरूरी बात श्रोताओं, कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने खत के माध्यम से हमें अवश्य ही लिख भेजें। खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी चाईबासा। तो श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी कि संगीता को विदा दें। कल एक बार फिर से आपके साथ इसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी संगीता को विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चायबासा।

FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और शतरंज में भारत के ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरू में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क

0: समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रिजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट NZP का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन IQ और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच

0: वे अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की, भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट के 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इसराइल के और ब्रोनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: हर हर महादेव।
3: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: हर हर महादेव।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है, देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नव भारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी, सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है और वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। रांची के एसएसपी ने समीक्षा बैठक कर थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद और अपराध पर लगाम के लिए रात्रि गश्ती बढ़ाने पर दिया जोर। सावन के अंतिम सोमवारी पर आज सुबह से ही देवघर बाबा मंदिर, बाबा बासुकीनाथ मंदिर, रांची पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। और हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में 1500 से अधिक टीमें शामिल होंगी। महोत्सव में 50,000 से अधिक खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में कहा कि सरकार को छात्रों की बातें सुनकर समस्या का समाधान करना चाहिए। बोकारो में कार्यक्रम के दौरान श्री मुंडा ने छात्रों पर लाठीचार्ज और मुकदमे को गलत बताया।
1: स्वाभाविक रूप से छात्रों का गुस्सा है, वो मुखर होकर के अपने बातों को कह रहे हैं। उनकी बातों को, उनकी भाषा को समझना चाहिए, बजाय इसके पुलिस बल और मुकदमेबाजी करके छात्रों का भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसका स्थायी समाधान कैसे निकले, इन सारे चीजों पर राज्य सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए।
0: जेपीएससी सीजीएल विवाद को लेकर झामुमो विधायक और पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने छात्र आंदोलन को भाजपा और उसके आनुषांगिक संगठनों द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 22 नियुक्तियों पर रोक लगाई है और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
2: इसको हम छात्रों का आंदोलन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये आंदोलन अब भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हो गया। सब छात्र ग्रुप अब अलग थलग हो गया और ये काम उन्हीं का है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी कि पहले ये तोड़ मड़ोड़ दो, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन चलाना है।
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 स्वाइन फ्लू के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एसएसपी ने थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद, पुलिस पब्लिक संबंध मजबूत करने और अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेन स्नैचिंग, अवैध हथियार, एनडीपीएस, चोरी और पोक्सो जैसे मामलों में विशेष अभियान चलाने, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और रात्रि गश्ती को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। एसएसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन तत्परता और जवाबदेही के साथ करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन

0: बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पवित्र श्रावण मास के अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम से लेकर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बोलबम बोलबम हर हर महादेव।
2: झारखंड के प्रमुख शिवालयों में आज सुबह की पहली किरण के साथ ही आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। उपराजधानी दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव में अंतिम सोमवारी को श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन की अंतिम सोमवारी पर सुगम और सुरक्षित जलाभिषेक सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में पुलिस बल की तैनाती की गई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: बोलबम बोलबम हर हर महादेव।
0: रामगढ़ जिले की पुलिस ने अवैध गांजा की खरीद बिक्री करने वाले दो आरोपियों रितेश कुमार और पुरुषोत्तम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लगभग 22 किलो गांजा और चार पहिया दो वाहन बरामद किए गए हैं। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार कल गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा मध्यवर्ती जिले खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इसमें एक दर्जन से अधिक खेलों में 50,000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन को वे आगे बढ़ा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सांसद खेल महोत्सव, और उस सांसद खेल महोत्सव को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री मनीष जायसवाल उसकी इन्होंने भरसक ये प्रयास किया है युवाओं के बीच उसको ले जाने के, ताकि गांव की जो प्रतिभावान खिलाड़ी है उन खिलाड़ियों को नई अवसर मिल सके। युवा अनुशासित होकर के खेल के प्रति, देश के प्रति प्रेम है, प्यार है और बढ़े।
0: वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि इस साल 1,500 से अधिक फुटबॉल टीम नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जब खेलते हैं तो वे नशा और अपराध की दुनिया से दूर रहते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी परीक्षा में कोचिंग सेंटर था सेटिंग का केंद्र, सीआईडी को मिले लेन देन के साक्ष्य। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची और हजारीबाग में छापे कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा। प्रभात खबर ने पेंडिंग म्यूटेशन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है, जिसका शीर्षक है, म्यूटेशन के 65,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग। दैनिक जागरण ने प्याज की बढ़ती कीमतों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, प्याज भी चला चीनी की चाल। और अब अंत में मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय में आज झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है और वर्तमान टीके बने हुए हैं प्रभावी। रांची के SSP ने समीक्षा बैठक कर थाना स्तर पर जनता से नियमित संवाद और अपराध पर लगाम के लिए रात्रि गश्ती बढ़ाने पर दिया जोर। सावन की अंतिम सोमवारी पर आज सुबह से ही देवघर बाबा मंदिर, बाबा बासुकीनाथ मंदिर, रांची पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों की जुटी है भीड़।

और हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव का आगाज। नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में 1500 से अधिक टीमें होंगी शामिल। महोत्सव में शामिल होंगे 50,000 से अधिक खिलाड़ी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:43 हो रहे हैं। वक्त है लोक गीतों के कार्यक्रम माटी की महक का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक। कार्यक्रम माटी की महक सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उराव लोकगीत कलाकार सुकरा भगत और उनके साथियों के स्वरों में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत कलाकार सुकरा भगत और उनके साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, कलाकार सुकरा भगत और साथियों के स्वरों में गाए हुए इस उड़ाव लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हमने आपको सुनवाए उड़ाव लोकगीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम विविधा का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है।

श्रोताओं, कैसे हैं आप? आशा नहीं बल्कि पूरी पूरी उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी स्वस्थ और सुखी होंगे और अपनी अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर व्यस्त भी होंगे, पर हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप अपनी व्यस्तता भरी दिनचर्या से समय निकालकर हमें सुनते हैं और हमें अपने खतों के माध्यम से प्रोत्साहित करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम विविधा में हर दिन हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर हाजिर रहते हैं, तो जानकारियों का दौर आज भी बदस्तूर जारी रहेगा। श्रोताओं, बारिश का मौसम है और इस समय बारिश अपने पूरे जोश में है, यानी कि हर तरफ बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही खुशमिजाज है। और बारिश का नाम आते ही और बारिश का मौसम शुरू होते ही हमारा ध्यान अनायास ही पकौड़ों की तरफ चला जाता है, तली भुनी चीज़ों की तरफ या फिर चटपटी चीज़ों की तरफ चला जाता है, जो कि स्वाभाविक है ऐसे मौसम में खाना, क्योंकि मौसम में काफ़ी नमी रहती है और आपके शरीर में की इच्छा कह सकते हैं हम या चाह कह सकते हैं कि होती है कि आप इस समय कुछ गर्म गर्म ताज़ा खाना खाएं। तो ऐसे में जब आपकी चाह तले भुने चीज़ों की होगी तो आपके ऊपर कुछ बीमारियां भी आ सकती है, और बारिश के मौसम में आपको अपना ध्यान रखना होगा। और कुछ बेसिक से टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि मानसून में अगर खुद का ध्यान ना रखा जाए तो आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती है। तो आइए हम कुछ आपको ज़रूरी बातें बताते हैं जिसका ध्यान रख करके आप इस मानसून के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। तो श्रोताओं, बारिश का मौसम शुरू होते ही सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वो है वायरल संक्रमण का खतरा। इस दौरान अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी होती है वो अगर स्ट्रांग या मजबूत नहीं होगी, तो आपका शरीर बीमारियों को झेल पाने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में आपको ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, और इसके लिए जो आपको करना होगा, सबसे पहला ज़रूरी काम है आपको सेहतमंद यानी कि पूरा अच्छा खाना खाना पड़ेगा, जो कि न्यूट्रिशन और पोषण से भरपूर हो। इसके अलावा आपको समय समय पर भरपूर मात्रा में पानी पीना पड़ेगा, चाहे आपको प्यास ना भी लगी हो तो भी आपको पानी पीते रहना है। और इस समय में आप विशेष तौर पर विटामिन सी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, खट्टे फलों का इस्तेमाल करें। खाने में अपने आप जरूर से सलाद और खट्टे फलों को शामिल करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और अगर आपको गर्म कुछ पीने का मन करे तो आप ऐसे में टमाटर का सूप या फिर मिक्स वेजिटेबल का सूप आप पी सकते हैं, गर्म चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे सीमित मात्रा में। आप घर में हैं, बारिश का मौसम है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे। नहीं श्रोताओं, ऐसा करना आपके शरीर के सेहत के दृष्टि से काफ़ी खतरनाक है। आप चाय पिए दिन में एक से दो प्याली या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तीन प्याली चाय आप पी सकते हैं, लेकिन उस चाय में आप अदरक, लौंग, इलायची का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी लाभदायक होगी। और ऐसे मौसम में, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको मौसम की नमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो ऐसे में

0: आप अपने आप को हाइड्रेट रखने के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें और अपना ध्यान रखें। और ऐसे में एक और जो संक्रमण का खतरा होता है वो होता है त्वचा संबंधी एलर्जी आपको हो सकती है, क्योंकि बारिश में भीगे रहने से मौसम में नमी रहती है और ऐसे में आपको त्वचा से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ सकती है। तो ऐसे में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर साफ पानी से नहाकर गीले कपड़ों को तुरंत खोलें और सूखे हुए कपड़े पहने, और अगर संभव हो सके तो घर में जो कपड़े आप धो के सुखाते हैं उन्हें भी आयरन करके पहने। ऐसा करने से कपड़ों में जो जर्म्स होते हैं या कीटाणु होते हैं वो मर जाएंगे आयरन होने से, और आपको किसी तरह का संक्रमण होने का खतरा नहीं होगा। अपने आप को सूखा रखें और कोशिश करें कि हाथ पैरों में अपने आपने कोई क्रीम जरूर लगाई हो। अपनी त्वचा को आप नमी बनाए रखेंगे त्वचा पे, और ऐसे में गर्म गर्म खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, पौष्टिक खाएं। तो श्रोताओं, और इसके इन सब के अलावा एक और जो सबसे अहम बात है, आप ऐसे समय में स्ट्रीट फूड को खाने से बचेंगे और मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, और अपने घर के आसपास आप जल जमाव होने से रोकेंगे। ऐसे जल जमाव होने के कारण मच्छर पैदा हो सकते हैं और उससे आपको बहुत तरह की बीमारियां भी हो सकती है। तो जहां भी जल जमा होता है उससे के निकास को आप सुगम करें, यानी कि पानी को जमा बिल्कुल भी ना होने दें, और जहां पानी जमा होता है उसके आसपास सफाई रखें और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते रहें। तो ये जरूरी बातें हैं श्रोताओं, जिसे अपनाकर आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है, बारिश के दिनों में आप अपना विशेष ध्यान रखें। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर रोमेला विर्क्सी, ये होम्योपैथिक की डॉक्टर हैं और इनसे बातें कर रही हूँ मैं, यानी कि संगीता। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। श्रोताओं, आपको बताते हुए हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि आज जो हमारी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है वो काफ़ी समय पहले से आकाशवाणी चायबासा से जुड़ी हुई है, और उनके द्वारा गाए हुए गीत आप हमारे यहाँ से अक्सर सुनते रहते हैं। वैसे तो इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक गायिका के साथ ही साथ एक होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए आइए हम आज इनका परिचय इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। स्वागत है मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार संगीता जी, मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं फिर से आकाशवाणी से जुड़ सकी। आज से करीब 20 साल पहले से मैं जुड़ी हुई हूँ, बहुत से कार्यक्रम में देती आई हूँ, और आज फिर आपसे ये मौका मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप एक बार फिर से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। तो मैडम अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जी जरूर जरूर, मैं डॉक्टर रुमेला बख्शी घोष, संगीत में एमए की हूँ शांति निकेतन से, और मेरी शास्त्रीय संगीत ही मुख्य थी उसमें। मैंने कहा शास्त्रीय के संगीत के सिवा मैं रविंद्र संगीत, नजरुल गीत, इनमें भी मैंने प्रभाकर किया है और मैं ये गाने भी गाती हूँ। क्योंकि शास्त्रीय संगीत बच्चों की बेस होती है, जैसे ABCD सिखाया जाता है एप्पल सीखने के लिए, तो उसी तरह से एक गाना सीखने के पहले शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली जाती है। इसके सिवा मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ, चायबासा में मेरी क्लिनिक भी है, और आज आपने मुझे इसलिए बुलाया है आज यहाँ पर जी, मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ आपको।
0: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप जैसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में है। तो हम आपसे आज इस कार्यक्रम में हर विषय पे जुड़ी हुई आपसे बातें करेंगे, और कार्यक्रम में अंत में आपसे हमें गीत भी सुनना जरूर चाहेंगे। हाँ, तो चलिए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और हम आपसे सबसे पहले ये सवाल जानना चाहेंगे कि आप होम्योपैथी की डॉक्टर हैं।
1: हाँ जी।
0: हाँ, तो मैडम जैसा कि हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, और इस समय न सिर्फ घर के छोटे बच्चे बल्कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, या फिर घर में जो भी व्यक्ति होते हैं, उनके काफ़ी सारी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं इस समय पैदा हो जाती है उनके अंदर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम कैसे इससे लड़ सकते हैं, और जो समस्याएं आती हैं उनके लिए क्या कोई शुरुआती तौर पे भी कोई दवाई है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह के संक्रमण या बीमारियों से बच सकते हैं।

0: हाँ जरूर।
1: मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, इतनी ज्यादा गर्मी थी, उसके बाद पहली बारिश से लोगों को काफी राहत मिली
0: जी
1: है।
0: जी
1: फिर लेकिन ऐसी बात होती है कि बारिश तो पहली ठीक है, अगर भारी बारिश हो रही है तो उस पे काफी परेशानी भी आ जाती है।
0: बिल्कुल
1: मौसम में बदलाव आ जाता है, मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है,
0: जी
1: और बच्चों का ख्याल तो बड़ों को रखना ही पड़ता है।
0: जी
1: बड़े तो खैर अपना ख्याल रख ही सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन इसके सिवा बड़ों को चाहिए कि बच्चों को हमेशा ख्याल रखें। मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मौसम की आर्द्रता के कारण
0: जी
1: पसीना बहुत आता है,
0: बिल्कुल
1: जिससे बड़े तो खैर पोंछ सकते हैं, अपना साफ सुथरा कपड़ा भी पहन सकते हैं,
0: जी
1: और इसमें क्या होती है कि त्वचा में खुजली होती है, जो रैसेस बहुत तरह की निकलती है, खुजली वगैरह,
0: जी
1: फुंसियाँ निकल जाती हैं। इससे बचने के लिए हमेशा साफ रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, नहाना चाहिए।
0: जी
1: और बरसात में मच्छरों के बढ़ने के कारण डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती है।
0: जी
1: तो अगर बरसात में मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है
0: जी
1: तो इसमें आपको बचना चाहिए। इसके लिए आप घर में जो आती है कपूर वगैरह, आप जला सकते हैं,
0: जी
1: या फिर बाहर में मच्छरों के लिए आपको बहुत सारे ऑलर्ट वगैरह जैसे रहते हैं प्रोडक्ट, वो भी आप घर में लगा सकते हैं।
0: जी
1: एवं हमेशा कोशिश कीजिए कि रात में मच्छरदानी लगा कर ही सोएं।
0: जी
1: इससे आपको क्या होगा कि मलेरिया वगैरह नहीं होगी।
0: बिल्कुल
1: मौसम में बदलाव के कारण कभी गर्मी तो कभी ठंड होती ही रहती है,
0: जी
1: जिसके कारण सर्दी, खांसी और दमा की बीमारियां बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल
1: हाथ पैर में दर्द वगैरह भी बढ़ जाता है आर्द्रता के कारण।
0: जी
1: बड़े बुजुर्गों में काफ़ी ज़्यादा रिमोटिज्म, अर्थराइटिस, ये सब की जो समस्याएं रहती है वो बढ़ जाती है।
0: जी
1: तो खैर, मैं बाद में ज़रूर बताऊंगी कि इसके लिए आपको होम्योपैथी की किस दवा से राहत मिलेगी।
0: जी
1: इसके सिवा मैं और एक बात बताना चाहूँगी
0: जी
1: कि बरसात में चूंकि पानी बहुत ज़्यादा रहता है, और जो हमारे आसपास जो जितने भी चूहों एवं सांप के जो बिल रहते हैं उसमें पानी भर जाते हैं,
0: जी
1: और पानी भर जाने के कारण वो जो रहते हैं जितने कीड़े मकोड़े सब बाहर निकल
0: बाहर
1: जाते हैं,
0: निकल जाते हैं
1: और वो आसपास से क्या होते हैं घर के अंदर में घुस जाते हैं।
0: जी
1: तो इनसे आपको हमेशा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बाहर में जितने भी है वो आप छिड़काव करें, ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का घर के बाहर छीट के रखें।
0: जी
1: कोशिश करें बाहर भी कहीं पर जल वगैरह का जमाव ना आने दें,
0: जी
1: जिससे मच्छर ना पनप सके या फिर दूसरे कीट पतंग नहीं आ सके,
0: जी
1: मक्खियाँ ना जन्म सके उससे। और इसके अलावा और भी एक कारण है कि बरसात में पानी दूषित हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में भी देखी जाती है कि उन्हें उल्टी, दस्त, टाइफाइड जैसे बीमारियां होते रहती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको बच्चों को तो पिलाने ही पड़ेगा कि आप उबाल कर पानी को ठंडा करके उसके बाद बच्चों को दें।
0: जी
1: और आजकल तो आरओ वगैरह भी आ चुकी है जो
0: जी
1: आप घर में लगा सकती हैं।
0: जी
1: उनके सिवा हमेशा साफ सुथरा पानी व्यवहार करें,
0: जी
1: बहुत ज़्यादा दिनों की पानी घर में ना रखें,
0: जी जी
1: और कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि बाहर में बहुत से स्टॉल वगैरह, बाहर जो होटल वगैरह रहते हैं वहाँ सफाई का बहुत जगह ध्यान नहीं रखा जाता है,
0: जी
1: जिसके कारण मक्खियाँ भिनभिनाती है खाना में, और इससे क्या होता है संक्रमण फैल जाता है।
0: जी
1: और बच्चे चूंकि छोटे रहते हैं, उनकी आदत नहीं है खाने की उस तरह की, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है
0: जी
1: पेट की।
0: जी
1: इसी तरह आप घर में भी ताज़ा खाना बना के उन्हें खिलाएं,
0: जी
1: और हमेशा ढक कर खाने को रखें, बासी खाना ना दें और ना ही खाएं आप।
0: जी
1: छोटे बच्चों की जो डायपर पहनते हैं वो हमेशा चेक करते रहें, हमेशा ध्यान रखें कि वो गीला ना रहे,
0: जी
1: उसे हमेशा सूखा रखें,
0: जी
1: उनके कपड़ों पर ध्यान दें, उन्हें सूती कपड़ा पहनाएं, अगर कपड़ा भीग जाता है पसीने से तो उन्हें फिर छुड़वा दें, दूसरा साफ कपड़ा पहनाएं,
0: जी
1: नहाना डेटॉल वगैरह से नहलाएं उनको,
0: जी
1: जिससे कि उनको कभी भी संक्रमण होने की समस्या ना आए। और कपड़े जो है हमेशा कोशिश कीजिएगा कि साबुन और डेटॉल एक साथ देकर ही धोएं। अगर अभी जैसे क्या है, अगर मानसून के समय नमी के कारण जो देखी जाती है कि सर्दी, खांसी, बुखार, ये अचानक से हो जाता है, गले में भी संक्रमण होता है,
0: जी
1: तो बरसात की एक मुख्य दवा है होम्योपैथी की,
0: जी
1: जो डलका

0: 30 CH बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो वो एक बूंद कर दिन में 3 बार खाली पेट में अब बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि उन्हें सर्दी खांसी बुखार की अगर हल्की सी लग रही है, जो समस्या शुरू हो रही है शुरुआत के दौर पर, तो वो ठीक हो जाएगी।
1: तो मैडम, ये जो दवाई का आपने नाम बताया, वो बच्चों को बुखार आने के बाद देना है या फिर हम जैसे बारिश का मौसम शुरू हो गया उस समय ही दे सकते हैं उन्हें?
0: जी, जब आप अगर बारिश के मौसम में अगर रोज अगर एक एक बूंद रोज देते हैं तो भी मुझे लगता है कि संक्रमण उतनी जल्दी नहीं होगी, और अगर हो जाती है तो फिर आपको तो दिन में 3 बार देनी ही पड़ेगी। जैसे एक बार सुबह दे दिया आपने, फिर दोपहर को दे दिया खाली पेट, और फिर एक बार शाम को दे दिया।
1: मतलब इसका एक बूंद ही सिर्फ बच्चे को देना?
0: जी हाँ जी हाँ जी,
1: पानी के साथ देना है?
0: हाँ, एक चम्मच पानी में एक बूंद डालकर बच्चों को पिला दीजिएगा। और बड़ों के लिए है दो बूंद मुंह में ले लीजिएगा। हाँ, जीभ में आप 2 बूंद ले सकती हैं, वो भी लेकिन आपको खाली पेट लेनी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और होम्योपैथी दवा लेने के लिए आपको बहुत सारी जो सावधानियां बरतनी पड़ती है, वो है कि आप होम्योपैथी दवा जो घर में रखते हैं जहाँ पर, वहाँ बहुत ज़्यादा आपकी कोई भी जैसे होती है महक वाली चीज़ें, वो नहीं रखा करें। जैसे पाउडर हुआ, सेंट हुआ, उसके आसपास ना रखा करें। और एवं जो बड़े जो हैं, हमेशा कभी कभी क्या होता है कि कच्चा लहसुन कच्चा प्याज खाते हैं
1: जी।
0: तो उस समय उसके कम से कम 3-4 घंटे तक वो ना लें। ज़्यादा जो महक वाली चीज़ें होती हैं उससे होम्योपैथी दवा थोड़ी से देर में काम करती है।
1: जी मैडम, हमने सुना है ये पहले अपने माता पिता से या फिर जो भी हमारे घर के बुजुर्ग होते थे, वो हमें बोलते थे कि अगर आप होम्योपैथिक दवा का सेवन कर रहे हैं तो आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, या फिर कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें होती थी कि इनके इस्तेमाल करने से होम्योपैथिक दवा आप पे असर नहीं करती है, तो क्या ये सही है?
0: हाँ जी, वो इमली की जो खट्टाई है ना, वो आप नहीं ले सकती हैं।
1: अच्छा।
0: तो बाकी तो नींबू तो बहुत अच्छी है, विटामिन सी की
1: जी
0: है, वो तो आप विटामिन सी के लिए नींबू का मैं तो कहूँगी कि हमें हर दिन नींबू खानी चाहिए। आप नींबू पानी पी सकते हैं, गर्मी में जैसे पसीना आपको काफी ज्यादा अगर आ रही है तो आप नींबू की पानी पी सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी।
1: तो उसमें हम चीनी डाल के पिए या फिर शहद को डाल करके नॉर्मल पानी में या फिर गर्म पानी?
0: चीनी तो मैं कहूंगी कि चीनी तो बहुत हानिकारक चीज है, चीनी से जितने दूर रहे उतनी अच्छी होगी। और आप ऐसा कर सकते हैं कि एक चुटकी नमक और आप आधी चम्मच जो ये है शहद है, वो मिलाकर नींबू का पानी आप एक ग्लास पी लीजिए। अगर दिन में कम से कम अगर दिन में 3 बार भी पीती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपको बढ़ेगी
1: जी जी।
0: और फिर क्या होगी, आपके पसीना की और सर्दी खांसी की समस्या से भी आप दूर रहिएगा
1: जी। मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी किसी भी रोग से लड़ने के लिए।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हमारी एक होम्योपैथी की दवाई है एकोनाइट।
1: अच्छा।
0: एकोनाइट 30 CH होती है। ये जैसे अचानक से आपको छींक आ रही है और मतलब हल्की से गले में अगर खराश हो रही है तो फिर आप एकोनाइट 30 CH की दवा आप उस समय ले सकती हैं तुरंत।
1: अच्छा।
0: लेकिन बरसात की जो है मुख्य दवा जो है, वो मैंने जो कहा डलका मारा, वो डलका मारा अगर बड़ों को दे रहे हैं तो वो 2-2 बूंद पूरे दिन में 3 बार दे सकती हैं, और बच्चों को 1-1 बूंद। और जो एकोनाइट है उसकी 1 बूंद बच्चों के लिए काफ़ी होती है, बड़ों को तो 2 बूंद लेनी पड़ेगी। और अगर पेट में दर्द है तो उसके लिए एक आती है आपका बायोकेमिक है मैकफॉस। मैकफॉस आप 12x ले सकते हैं, 4 गोली आप गर्म पानी के साथ, आधे कप गर्म पानी में अगर मैकफॉस लेती है तो फिर आपको जो दर्द होगी ना, पेट वगैरह दर्द होती है तो काफ़ी, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी।
1: जी, देखा जाता है बारिश के दिनों में कि हम कुछ अगर उल्टा पुल्टा खा लेते हैं या बाहर का कुछ खा लेते हैं तो पेट में दर्द दस्त और उल्टी जैसी समस्याएं अक्सर हो जाती हैं लोगों के अंदर।
0: जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सारी दवाइयाँ रहती है
1: जी।
0: आप तो विशेषज्ञ से आपको मिलना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा बढ़ जाती है
1: जी जी।
0: तो अगर छोटी छोटी समस्या हो रही है घर में, आप ये दवाइयाँ अपने घर में भी रख सकती हैं। अगर आपको जैसे सर दर्द हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो इससे आप मैकफॉस से काफ़ी आपको राहत मिलेगी, ये दर्द की दवाई है
1: जी। तो मैडम, बारिश के दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बदन में भी काफ़ी दर्द हो जाता है कई बार, मौसम की आर्द्रता की वजह से या गर्म ठंडा जो एक मौसम होता है उसकी वजह से।

0: हमारे जोड़ जोड़ में दर्द हो जाता है, बदन में दर्द हो जाता है, तो आपने जो ये अभी दवा का नाम बताया, क्या हम उस दवा को इसमें भी ले सकते हैं?
1: जी हाँ, ये जरूर से ले सकती हैं, क्योंकि ये तो मुख्यतः दर्द की ही दवाई है मैकफॉस।
0: अच्छा,
1: तो मैकफॉस आप दर्द के लिए ले सकती हैं, और अगर इसके साथ आप डलका मारा लेती हैं
0: जी,
1: तो ये तो बरसात की जिस दवा है, इसलिए आपको मैंने अगर दर्द कर रही है जो पैर में घुटने में कहीं पर भी दर्द कर रही है, तो उससे आपको ज़रूर से राहत मिलेगी।
0: जी चलिए, ये आपने बहुत अच्छी हमें एक सुझाव दिया कि इस दवाई को हम घर में रखें।
1: हाँ जी,
0: और
1: हाँ,
0: हम इसे प्राथमिक उपचार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते
1: हाँ,
0: हैं।
1: हाँ,
0: और अगर यदि हमारी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम किसी भी विशेषज्ञ से ज़रूर जाके इसको मिलें, और इसकी फिर जो प्रॉपर एक दवा होती है उसको
1: हाँ,
0: हम लोग लें। ठीक है मैडम, तो अब आप ये भी बताइए कि बच्चे इस समय में जो बारिश का मौसम है उन्हें कैसा खाना देना चाहिए हमें, क्योंकि बच्चे तो जंक फूड के बिना मानते नहीं है, वो खाते ही है, तो हमें किस तरीके से उन्हें रोकना चाहिए, और या फिर क्या उनको खाने में दें कि उनकी रुचि भी बनी रहे और वो खुश भी रहे और बारिश का मजा भी ले सकें।
1: जी, वो बात तो आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछी है।
0: जी
1: तो बात है कि आजकल बच्चों का आदत ही ऐसा हो गया है
0: जी
1: कि बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो भी है
0: जी,
1: ये सब उन्हें काफ़ी पसंद आती है, और घर में बनाया हुआ कुछ भी पसंद नहीं आता
0: पसंद
1: है।
0: नहीं आता है।
1: तो इसके लिए मैं कहूँगी कि देखिए, उसके लिए आपको घर में क्या करनी पड़ेगी कि आप जैसे अगर आटा ले रहे हैं तो वो रोटी खाने वाले तो है नहीं,
0: जी जी
1: तो आप आटा को भी उस तरह से आप ये कर सकते हैं, घोल घोल करके उसमें सूजी डाल के थोड़ा सा
0: जी
1: नमक वगैरह डाल के, जैसे आप तवा वगैरह में फैला रहे हैं,
0: हाँ,
1: फैला के जैसे पिज्ज़ा रहता
0: मतलब
1: है उस
0: बाहर
1: तरह
0: में जो
1: से
0: पिज्जा मिलता है उसका
1: बस।
0: हम लोग आटे से बेस बना के घर में
1: हाँ
0: बना
1: हाँ
0: के
1: हाँ
0: दे
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: आटे और सूजी का बेस बना के
0: जी जी
1: आप उसमें बटर लगा के, उसके बाद जो आपका पिज्ज़ा सीजनिंग आता है बाजार में मिलता है
0: जी जी
1: वो आप छीट दीजिएगा, तो उसका उसका एक आता है महक जैसा उसी तरह लगता है, उसमें आपको गाजर कैप्सिकम वगैरह जितने हैं वो सब्जी वगैरह जो है वो आप ऊपर से डालकर, और एकदम पिज्ज़ा जैसा देखने में लगेगा, उसमें टमाटर सॉस घर में बनाकर वो जो
0: जी जी
1: देकर उसमें दे, वो आराम से खाएंगे। और दोपहर का खाना में आप कोशिश कीजिएगा कि खिचड़ी हल्का खाना दें, खिचड़ी दें, और दलिया की खिचड़ी दे सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी बहुत ही अच्छी होती है
0: जी
1: बच्चों को दें, उसमें क्या रहता है कि पेट की समस्या नहीं होगी, अगर किसी को कंस्टिपेशन की समस्या होती है
0: जी
1: तो साबूदाना की खिचड़ी खाने से वो ठीक हो जाती है।
0: जी चलिए मैडम, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों को घर का बना हम खाना दें, उन्हीं में उसी का स्वाद हम बढ़ा के अलग तरीके से, हम माओं के ऊपर ये ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है
1: जी हाँ,
0: कि हम
1: जी हाँ,
0: बच्चे
1: जी
0: को उनके रुचि का खाना घर में बना करके
1: जी
0: दें,
1: जी जी
0: बाहर
1: जी
0: के खाने से उन्हें बचाएं, क्योंकि बाहर का खाना खुला हुआ रहता है, दूषित रहता है मच्छर मक्खियों के बैठने के कारण।
1: जी हाँ,
0: तो
1: जी
0: अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बच्चों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचा सकते हैं।
1: एकदम
0: जी, तो मैडम अब हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि घर में जो हमारे बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी देखभाल हम इस समय कैसे करें?
1: बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर बड़े बुजुर्ग भी एक समय ऐसा आता है कि हमें उनकी भी बच्चों की तरह ही सेवा करनी
0: जी
1: पड़ती
0: जी
1: है, तो बच्चे जिस तरह से जिद करते हैं खाने के लिए उस तरह से मैं देखती हूँ कि बड़े बुजुर्ग भी उस तरह से, मैं आपको मैंने कम से कम 70 के ऊपर ही की बात कर रही हूँ।
0: जी जी
1: हाँ, जैसे आयु अगर 70 के ऊपर रहती है तो उस समय ज़्यादा समस्याएं यही रहती हैं कि बुजुर्ग हमेशा बच्चे बन जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो उनको भी आप प्यार से समझाया कीजिएगा, क्योंकि उनमें ऐसा लगता है उस समय कि आप अगर कोई चीज़ में उनको बोलते हैं कि ये नहीं खाया करो, ये बरसात में हो सकती है कि आपका पेट ठीक नहीं रहे,
0: जी
1: या फिर ठंडा पानी पीने से या कुछ ठंड आइसक्रीम वगैरह खाने से आपको तकलीफ होगी, दम्मे की बीमारी रहेगी तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और सर्दी खांसी भी हो सकती है।
0: जी,
1: तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि उनको भी बच्चों की तरह से आपको समझाना पड़ेगा, जैसे अगर वो आइसक्रीम जैसी चीज़ें खाना चाहते हैं तो आप ज़रूर से उनको दें, लेकिन उनको बोले कि आप एक जैसे आइसक्रीम को कटोरा में रखकर उसको गला करके उसको फिर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर जो है उनका वो
0: डाउन हो जाए,
1: हाँ रूम टेम्परेचर जो है उसका जो ठंडापन है वो थोड़ा सा घट जाए, उसके बाद आराम से उनको खाने बोलिएगा। मैं सोचती हूँ प्यार से समझाने से बड़े बुजुर्ग मान जाते हैं,
0: जी जी
1: अगर थोड़ा सा आप राय देने चले जाए

0: है तो उनको लगता है कि बड़े हमारा तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हम इनका बात कैसे माने। हाँ
1: जी
0: तो ये समझ सकते हैं, इसलिए आपको प्यार से समझाना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा
0: और
1: आपने
0: खाने में जो है आप कोशिश कीजिएगा कि तला भुना ना दें,
1: जी।
0: और अगर तला भुना चाहते ही हैं तो बहुत कम तेल में आप सोलो फ्राई जो बोलते हैं
1: जी जी
0: वो हल्का तेल में आप कढ़ाई में देकर उसको उनको दे सकते हैं,
1: जी
0: या फिर आप रोस्ट वगैरह जो रहता है जैसे
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो करके भी आप उनको दे सकते
1: जी
0: हैं। कोई भी खाना दे तो अगर उनका टेस्ट में थोड़ा सा बदलाव करके लाए तो
1: जी
0: उनको अच्छा लगेगा और उनको
1: जी
0: ये भी लगेगा कि आप उनका ख्याल कर रहे हैं।
1: जी जी मैडम आज आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दी है। अब कार्यक्रम अपने अंत की ओर बढ़ रहा है तो अब
0: जी
1: हम ऐसे में आपसे चाहेंगे, जैसा आपने शुरू में बताया कि आप एक संगीतज्ञ भी गाना भी गाती हैं, आप बच्चों को भी सिखाती
0: जी
1: हैं,
0: हाँ
1: तो हम
0: जी
1: आपसे एक गाना या फिर गीत भजन जो भी आप चाहें हमारे श्रोताओं को सुनाएं।

0: वाह मैडम, जितनी अच्छी आपकी मधुर आवाज़, उतना ही मधुर गाना भी आपने गाया। भजन जो आपने हमें सुनाया, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
1: जी, आपको संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एवं हमारे जो श्रोतागण हैं जो हमें आज सुन रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुना।
0: जी धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय था बारिश के दिनों में आप रखें अपना विशेष ध्यान, और भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर, होम्योपैथिक के डॉक्टर रोमेला बक्स।

और उनसे बातें कर रही थी मैं, यानी कि संगीता। और इस भेंटवार्ता के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है FM की 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम रस रंजन की शुरुआत श्रोताओं हम कर रहे हैं फिल्म हम आपके हैं कौन के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है गायक कलाकार लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं देव कोहली ने और धुन है राम लक्ष्मण की।

सिर्फ तुम कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की।

फिल्म सिर्फ तुम के इस गीत के पास श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अगला नगमा हमने लिया है फिल्म चमेली से। आवाज का एक कलाकार सुनिधि चौहान की है। इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन है संदेश शांडिल्य की।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रसरंजन में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म अफसाना प्यार का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं गायक कलाकार अमित कुमार और आशा भोसले ने, बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है बापी लहरी की।

श्रोताओं, अमित कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरूप में गाए हुए फिल्म अफसाना प्यार का के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रस रंजन। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है एनसीईआरटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय।

0: हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
1: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
0: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
1: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT Books PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या

0: ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
5: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
4: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
3: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
5: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट।
4: सर, आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
3: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
4: जी।
3: देखो, विशाल और शांत महासागर एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
4: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
3: बेटा, उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
4: अच्छा?
3: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
5: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
3: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
5: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
3: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है, आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
4: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
5: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
3: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
5: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
4: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
4: अच्छा, तो ये बात है।
3: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
4: माउंट एवरेस्ट।
3: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं।

0: जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।

0: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
1: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
0: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
2: Marvelous.
1: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ये किस तरह की मूर्ति है?
5: ऐसी मूर्ति तो मैंने
6: वाओ वंडरफुल।
0: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
1: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
0: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
1: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
0: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
3: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
4: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
1: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
0: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते, और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
1: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
2: ग्रेट, मार्वेलस।
4: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
2: वंडरफुल।
8: हाँ, हम सहमत हैं।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है। यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
1: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
0: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
1: आज करे

0: अब पल में परले होएगी बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
1: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आपने सुना NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो चुके हैं। हमारा आज का अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का होगा, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए इन कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी रांची। कृपया प्रतीक्षा करें।

गीत के बाद पुनः स्वागत करती हूँ कार्यक्रम आलसा चले में। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में श्री कामेश्वर बेदिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मांझी सर से काफी विस्तार से जितनी भी योजनाओं के बारे में बातें हमने की, मैं समझती हूँ श्रोताओं

0: कि इन बातों का लाभ आपको भी मिलेगा और इन बातों से आप प्रेरणा जरूर लेंगे। सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुमूल्य वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही हमारा आज का आओ साथ चलें कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें इजाजत। नमस्कार।
2: आओ साथ चलें, अभी हम सुन रहे थे प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा का, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण का। अब इसी के साथ आओ साथ चलें संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हम सुनेंगे जोहार रांची।

0: सुनने वाले तमाम श्रोताओं को आभा और
1: ऋतुश्री का जोहार
0: जोहार।
1: और आकाशवाणी रांची के इस खास कार्यक्रम जोहार रांची में आपका हार्दिक स्वागत है।
0: और आज हम लेकर आए हैं प्रकृति की गोद में बसे हमारे रांची शहर की वो महक जो इन दिनों बाबा भोलेनाथ के जयकारों से सराबोर है।
1: हाँ आभा, पहाड़ी मंदिर हो, देवड़ी मंदिर हो या मदन मोहन मंदिर, सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी है, क्योंकि आज सावन का अंतिम सोमवार है। सावन यानी रिमझिम फुहारे, हरियाली की चादर ओढ़े हमारे छोटे बड़े पहाड़ और कल कल बहती नदियाँ।
0: और सावन सिर्फ महीना नहीं बल्कि झारखंड की रूह में बसने वाला एक उत्सव है। खेतों में धान रोपते किसानों के गीत, मक्के के भुट्टो की खुशबू और बच्चों की किलकारियाँ, सब कुछ इस सावन में जीवंत हो उठता है।
1: बिल्कुल सही, अंतिम सोमवार की ये बेला हमें ये सिखाती है कि कैसे प्रकृति और आस्था मिलकर जीवन में नया रंग भरते हैं। तो चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने शहर की खुशहाली और भोलेनाथ के आशीर्वाद और उन्हें समर्पित इस गीत के साथ।
0: बिल्कुल।

0: और जोहरा जी, मैं एक बार फिर अपने दोस्तों का स्वागत करते हैं आप।
1: हाँ बिल्कुल, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इतिहास की।
0: हाँ, तो चलो हम बातें करते हैं कि 24 अगस्त को क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटी थीं।
1: तो इतिहास के पन्ने हम पलटे तो जानेंगे कि 24 अगस्त 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत के तट पर पहुंचा था, और आज ही के दिन सन 1690 में जाव चारनाक ने कलकत्ता शहर की नींव रखी थी, जिसे इस शहर का स्थापना दिवस माना जाता है।
0: हाँ, और 24 अगस्त 1891 में थॉमस एडिसन ने काइनेटोग्राफिक कैमरा और काइनेटोस्कोप के लिए पेटेंट हासिल किया था। 1669 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे।
1: बात करें 24 अगस्त वर्ष 1991 की, तो आज ही के दिन यूक्रेन सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ था, और साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय

0: संघ ने प्लूटो का ग्रह का दर्जा खत्म किया था और उसे बौना ग्रह घोषित किया था।
1: हाँ।
0: और 1995 में आज ही के दिन उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 की आम जनता के लिए शुरुआत हुई थी।
1: हाँ, और ये भी बता दे आपा, 2008 में पेचिंग ओलंपिक का समापन आज के दिन ही हुआ था और इसमें चीन 51 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था। 24 अगस्त 2009 को वेनेजुएला की स्टेफेनिया फर्नांडीज मिस यूनिवर्स 2009 चुनी गई और 2011 में मूडीज ने जापान की रेंड साक AA3 से घटाकर AA2 कर दी थी।

0: और आभा जोहरा जी में हम बातें कर रहे थे इतिहास की।
1: हाँ, तो अब जानते हैं कि किन हस्तियों का जन्म हुआ था आज ही के दिन।
0: हाँ,
1: तो बात करें 24 अगस्त 1927 की, तो आज ही के दिन दीप्ति वर्मा का जन्म हुआ जो भारत की महिला क्रिकेटर हैं। और इसी वर्ष अंजलि देवी का जन्म हुआ जो भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता है। बात करें वर्ष 1917 की, तो आज ही के दिन बसवराज राजगुरु ने इस दुनिया में कदम रखा जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत का राजा कहा जाता है।
0: चंद्र सिंह बरकली जो आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि थे, 1912 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। 1911 में बीना दास का जन्म हुआ जो भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक थी।
1: 24 अगस्त 1908 में स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म हुआ। और 1889 में आज ही के दिन के लप्पम का जन्म हुआ जो केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे।
0: और बाल गंगाधर खेर जो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे, इनका अवतरण आज ही के दिन 24 अगस्त 1888 को हुआ था। 1883 में गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार नर्मद का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। 1872 में नरसिंह चिंतामन केलकर जो कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार थे, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था।

0: और अभा अब हम बातें करते हैं उनकी जिन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कहा।
1: तो 24 अगस्त 1925 को रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो कि एक समाज सुधारक थे, इनकी मृत्यु हुई थी। 1968 में आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाजशास्त्र के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर्जी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे।
0: और आज के दिन

0: 1972 में वेंकटरामा रामालिंगम पिल्लई का निधन हुआ था। ये भारतीय साहित्यकार थे जो तमिलनाडु से थे। 1988 में छुंगा का देहांत हुआ था, जो भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
1: बात करें 1993 की, तो आज ही के दिन डीबी देवघर का निधन हुआ था, जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिनके नाम पर क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी खेला जाता है। हाँ। और आज ही के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का निधन हुआ था। 24 अगस्त सन 2019 को इनका निधन हुआ था, नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में। और उन्होंने भारत सरकार के वित्त और रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था, और देश में जीएसटी लागू करने और आर्थिक सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।
0: हाँ, और ये भी बता दें कि आज प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी आनंद जी जो थे, कल्याण जी की मृत्यु आज के दिन ही हुई थी। इनका निधन 24 अगस्त 2000 को हुआ। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन गाने दिए। कोरा कागज फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। तो आइए सुने इसी फिल्म का ये गाना।

0: और अब हम बातें कर रहे थे कल्याण जी आनंद जी के बारे में।
1: हाँ।
0: इनकी संगीत जोड़ी बेहद मशहूर थी
1: बिल्कुल।
0: और एक से पढ़कर एक बेहतरीन गाने इन्होंने हिंदी सिने जगत को दिया। तो हम कल्याण जी आनंद जी के संगीतबद्ध किए एक और गाने को सुनते हैं।
1: हाँ।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: और अभा आओ कुछ जानकारी ले मौसम के बारे में।
3: हाँ बिल्कुल, तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है बदले रहने की संभावना है।
2: देखो बारिश तो बहुत हो रही है रात से,
3: और मैं आने टाइम भी ऑफिस आने टाइम में भीग गई थी। हाँ, अचानक हाँ। से मौसम चेंज हो गया ना।
2: हाँ।
3: और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में राजधानी रांची में भारी बारिश का भी अनुमान है, और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार 24 से लेकर 26 अगस्त तक मौसम सामान्य रहेगा, और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
2: और वैसे ये भी बता दें कि 25 से 27 अगस्त के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में वज्रपात और तेज हवा का खतरा बना रहेगा। 26 अगस्त को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शनिवार को रांची का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। और ये भी बता दें कि न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। सिमडेगा के बानो में सर्वाधिक 38.5 मिलीमीटर बरसा दर्ज की गई है।
3: तो मिला जुला के कहने का मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश यूं ही बनी रहेगी, है ना।
2: हाँ।

0: और आभा देखो, एक चीज तो हम बताते हैं कि चिलचिलाती धूप के बाद जो मानसून की बारिश होती है ना, ये भले ही बहुत राहत लेकर आती है, लेकिन इसी राहत के बीच कई संक्रामक बीमारियां और उनसे जुड़े ये जो खतरे होते हैं वो हम सब पर मंडराने लगता है। बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और बारिश के दौरान जमा पानी में मच्छरों के पनपने की आशंका सबसे अधिक रहती है।
1: बिल्कुल।
0: और हम ये बताते चले कि साफ और सफाई ये बहुत जरूरी है।
1: कहने का मतलब साफ और गंदे दोनों तरह के जमा पानी में मच्छर पनपते हैं और यही मच्छर कई बार जानलेवा साबित भी होते हैं। तो ऐसे में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए हमें कुछ सावधानियां बहुत जरूरी है बरतने की, है ना?
0: बिल्कुल। और देखो, मच्छरों की नो एंट्री के लिए घर के भीतर और आसपास कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। सप्ताह में एक दिन तय कर ले जब कूलर, फ्रिज के पीछे की ट्रे, गमलों के नीचे रखी प्लेट और पालतू जानवरों के बर्तन को जो होता है ना, उसे पूरी तरह खाली करके सुखा दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, चाहे आप दिन में भी सो रहे हो या रात में। डेंगू के मच्छर अमूमन दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहते हैं।
1: और मच्छरों से बचाव के लिए आप घर के आसपास गेंदे का पौधा, तुलसी, लेमन ग्रास या पुदीना लगाएं। इनकी खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं और शाम के समय बच्चों को बाहर खेलने भेजते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनाकर भेजें और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें।
0: बिल्कुल। और यदि घर के आसपास कहीं पानी जमा है तो उसे तुरंत हटाना मुमकिन नहीं है तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर या मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दे। इससे मच्छर का लार्वा सांस नहीं ले पाता और वहीं दम तोड़ देता है। इसलिए बरसात में सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि न जमा रहेगा पानी और नहीं पनकेंगे मच्छर।

0: और आभा आप कुछ बातें हैं खेल जगत की।
1: हाँ तो आपको बता दें बिहार को 5-1 से हराकर झारखंड जो है सेमीफाइनल में है। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार को 5-1 से करारी शिकस्त दी है और इस जीत के साथ झारखंड ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
0: हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुकाबले की शुरुआत से ही झारखंड के खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया, तेज पासिंग, बेहतरीन तालमेल और मजबूत टीम वर्क के दम पर टीम ने बिहार पर लगातार दबाव बनाए रखा। झारखंड के खिलाड़ियों ने लगातार गोल कर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वहीं रक्षा पंक्ति के ने भी पूरे मैच में अनुशासित प्रदर्शन किया और बिहार को ज्यादा मौके नहीं दिए। और ये देखो झारखंड,
1: हाँ तो झारखंड की ओर से किए गए शानदार गोलों के सामने बिहार की टीम संघर्ष करती नजर आई और इससे हम कह सकते हैं कि झारखंड ने मुकाबला 5-1 से अपने नाम कर लिया और इस जीत से खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में काफी उत्साह है।
0: और ये तो बहुत अच्छी बात है, सारे खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं।
1: हाँ

0: और आभा देखो इन दिनों ना तुम देखती हो कि रील बनाने का लोगों को बहुत शौक है.
1: बिल्कुल.
0: अगर बारिश हो रही है और उसको उसका रील बनाना है तो लोग ऊंची ऊंची जगह पे चढ़ जाते हैं.
1: हाँ.
0: और एक खतरनाक इसको अंजाम दे देते हैं.
1: और अभी हाल फिलहाल में मुझे पता है कि ऐसी घटनाएं हुई भी हैं.
0: हाँ हाँ.
1: कि कोई रील बनाते कोई रील बनाते हुए कोई लड़का गिर गया.
0: हाँ. और तो, होता क्या है ना कि हम ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं और ये सीन लेना ये सीन लेना वो करते रहते हैं और हमने पैर कहाँ रखा है, उसके नीचे कितनी गहराई है, या फिर
1: इसका ध्यान नहीं
0: नहीं रख पाते हैं. तो हम यही कहना चाहेंगे कि रील्स तो जरूर बनाइए लेकिन अपनी सावधानी को अपनी सुरक्षा को पहले आगे रखिए. और इस मतलब एक अध्ययन भी ये बताता है कि
1: और इससे ये भी है ना कि स्मार्टफोन ज्यादा उपयोग करने से आपकी आंखों पर भी असर पड़ता है और ये मानसिक थकान और नींद से जुड़ी समस्याओं को जन्म देता है.
0: तो अच्छी बात है कि हमारे पास इतना बढ़िया एक गैजेट है जिसको हम जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन
1: उसका मिसयूज ना करें,
0: मिसयूज नहीं करना चाहिए और तभी ये हमारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा और हमारी जानकारी के लिए भी अच्छा रहेगा. तो देखो अब आप बातें करते करते जोहारा जी का वक्त संपन्न होने को है.
1: हाँ,
0: तो हम अपने श्रोताओं को कहते हैं जोहार
1: नमस्कार.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुहार रांची। अब के आपके फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आपकी पसंद में। लेते हैं पहला खत जो कि है बाबा बैजनाथ धाम से। आप हैं मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और प्रतीक केसरी। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेम नेताम, कुसुम नेताम और इनकी फरमाइश है किशोर कुमार की आवाज में ये गीत सुनने का। फिल्म है याराना, धुन बनाई है राजेश खन्ना ने और गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं आपके फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गाना है फिल्म बाबू से लता मंगेशकर की आवाज में, रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत राजेश रोशन का। और इस गाने को सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गीत सुनिए कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राज अमित कुमार राय की फरमाइश पर फिल्म चांदनी से। आवाजें हैं बाबला मेहता और लता मंगेशकर की, बोल हैं आनंद बख्शी के, शिव हरि का संगीत।

अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म है मेहंदी रंग लाएगी। और इस गाने को सुनना चाहते हैं अमजद अली खान, अब्बास आलम, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेक वीरक और मीका वीरक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे नागपुरी भाषा में।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनवैया सभे बहिन मन के वन्ना बटले जोहार और रानी बहिन और कोहो जोहार कहो कैसन हाल समाचार है।
1: जोहार वन्ना बहिन और कार्यक्रम सुनवैया सब बहिन मन के रानी बटले जोहार। हमार हाल समाचार तो एकदम बेसे बेस है। रावरे कहो अपन हाल समाचार कर विषय में।
0: हमो एकदम नगदे नगद ही सुमन रानी बहिन और आसरा करीला की सब सुनवैया बहिन मन भी कुशल मंगल से होबे और स्वस्थ होबे और अपन परिवार कर संगे हमरे कर कार्यक्रम के जरूर सुनत होबे।
1: एकदम जरूर सुनत होबे और सुमन बहिन भी सुनत होबे। और रावरे जो स्वस्थ रह कर बात कहली तो हमरे मन तो जाने ला कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ धन है और जिंदगी में भगवान का देल सबसे सुंदर उपहार है। पैसा धन दौलत सब फिर मिल सकेला कमा सकेला लेकिन जिंदगी नहीं है। नहीं
0: सही कर ली। और एगो छोट आदत कखनो कखनो गोटा जीवन कर दिशा के बदल देवेला और अगर वो आदत बढ़िया है तो जिंदगी संवर भी जाएला। कहो बहन।
1: हाँ एकदम। लेकिन अगर वो आदत नशा कर हो तो वो आदत जिंदगी कर साथे साथे परिवार के भी माने दोनों के मुश्किल में डाल देवेला बर्बाद कर देवेला।
0: एकदम सही कह ली रानी बहन। और आज कल नशा कर बात सुन ले मन में कैगो चीज आवेला जैसे की गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट शराब दारू और नशीला चीज मन और ई सब कर दुष्प्रभाव जो है से धीरे धीरे शरीर कर ऊपरे पड़ेला है नी।
1: हाँ और जानी ना वन्ना बहन नशा करे कर शुरुआत जो हुएला नहीं हमेशा छोट बात से हुएला। आदमी मन सोचा ना कि कभी कभी नशा करत ही कम करत ही इकर से का हुई लेकिन ई कभी कभी कब आदत बन जाएला और फिर ई आदत कब मजबूरी बन जाएला इकर पते नहीं चले का।
0: सही कह ली। के धाव दोस्त संगी मन कर कहल से तो कखनो तनाव के कम करे के लिए और कखनो मजाक में या फिर कखनो जिज्ञासा या शौक कर चलते आजकल तो फैशन कर नाव से भी नशा करल जाएला। आदमी मन सोचे ना कि एक बार नशा करके देखीला कि कैसन बुझाएला।
1: हाँ लेकिन नशा लेवे कर कोई भी कारण सही नखे ये कोई समस्या का समाधान नखे ये तो सबसे बड़ समस्या कर शुरुआत है कहूँ तो जड़ है समस्या कर। और नशा कर सबसे बड़ परेशानी यह है कि ये खाली व्यक्ति कर आदत के नहीं बदले बल्कि उकर स्वास्थ्य और जीवन शैली के भी बुरी तरह प्रभावित करेला।
0: एकदम सही कहली रानी बहन। और तंबाकू धूम्रपान से मुंह गला और फेफड़ा से जुड़ल गंभीर बीमारी कर खतरा भी होवेला और शराब कर सेवन कर ले शरीर कर कैगो अंग के भी नुकसान पहुंचेला।
1: हाँ और हमरे मन बात करेला हमेशा की और सुनी ला भी की नशा हमरे कर स्वास्थ्य ले हानिकारक है घातक हुएला और इकर दुष्प्रभाव जो है खाली उ व्यक्ति

0: सीमित नहीं रहेला, एकर से घर कर माहौल, आर्थिक स्थिति, कमाई धमाई कर साथे साथे आपसी रिश्ता भी खराब होवेला।
1: माने नशा कर बुरा असर खाली नशा करे वाला व्यक्ति पर नहीं बल्कि गोटा परिवार के ऊपर पड़ेला, और परिवार पर असर पड़ी तो जाहिर सा बात है कि समाज भी कमजोर होगी, और जखन समाज कमजोर होगी तो इकर असर जो है गोटा देश के ऊपर भी पड़ी।
0: हाँ, ये बात तो सही कहती वन्ना बहन, और ऐसा होवे ठीक तो नखे, और ऐसा हमरे मन होए भी नहीं देव का। तो इकर से बाचे ले का करे होई कि अगर परिवार में केखू नशा कर आदत है, वो परेशान है, तो उके प्यार से समझाए चाहिए कि नशा कर जो आदत है ये बेस नखे, ये बहुत खराब है।
1: हाँ, और हिया महिला मन कर भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होवेला। ये काम महिला मन से बढ़िया क्यों नहीं करे पार में, काले की महिला परिवार कर धुरी होवेला। रानी बहन, तो अगर परिवार में क्यों नशा करेला और उकर मजाक नहीं उड़ाओ, ताना नहीं मारो, बार बार डांटे के भी उके ठीक न खे, उमन के हमरे मन के समझाई चाहिए।
0: हाँ, लेकिन तब वन्ना बहन जब उमने ठीक रहना, माने जब नशा में नहीं रहना, तब से बेरा प्यार से बोलू, बतियाओ, साथ देव, हिम्मत देव, और जरूरत पड़ ले डॉक्टर या नशा मुक्ति विशेषज्ञ कर भी मदद लेवे चाहिए।
1: हाँ, और काले की कह धाम नशा छोड़े आसान नहीं होवेला, लेकिन इस असंभव भी नखे। और एगो बात याद रखे चाहिए कि जिंदगी में दुनिया कर कोनवे काम असंभव नखे, और नशा तो कोनो ऐसा कामे नखे, एगो बुरा आदत खाली है, और अगर आदत के जरूर हमरे मन कोशिश करब तो बदलल जा सकेला, ओके छोड़ल जा सकेला, है नी।
0: हाँ।
1: ओके प्यार से, दुलार से, समझदारी से, और हिम्मत कर संगे, डॉक्टर कर सहयोग से, काले की ई आदत हमरे कर शरीर और स्वास्थ्य ले बहुत बड़ नखे।
0: हाँ, बहुत बुरा है, सेले स्वास्थ्य के बढ़िया बनाए वाला आदत के अपनाए चाहिए। जे पैसा नशा कर चीज खरीदे में लगा थी, सके फल सब्जी जैसन अच्छी मतलब बेस्ट चीज जो है छव मन कर पढ़ाई लिखाई घर परिवार कर बढ़ोतरी में लगा ले, कतई फायदा हुई, परिवार संग सभी खुशहाल रह बैगा।
1: एकदम सही।
0: और अगर कोई महिला नशा कर ई खराब आदत से परेशान है, या फिर कोई महिला खुद नशा करे ना, तो ये तो और भी घातक है का, काले की महिला मनकर स्वास्थ्य में नशा बहुत बुरा प्रभाव डालेला। वो इनकर शरीर में कै गो स्तर पर दुष्प्रभाव डालेला, ये शरीर के भीतरे से कमजोर कर देवेला।
1: सही कहली रानी बहन। और संग है महिला मनक जे प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भावस्था के है वो प्रभावित भी करेला, और गर्भावस्था कर दौरान नशा कर ले माय कर संगे संगे गर्भ में पले वाला जो छुआ है उकर ले भी नुकसानदायक है, से लेकर से हमरे के दूर रह चाहिए। और आज कल कर महिला मने देखो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़त है, अपने को अलग पहचान भी बनाते हैं, तो ऐसा में तो ये और भी जरूरी हो जाएगा कि नशा जैसा हानिकारक आदत से अपने के दूर रखू, और अपन परिवार के भी नशा से हमरे के जरूर बचाए चाहिए।
0: एकदम, इकर से बढ़िया और का होगी कि हमरे मन सब खुद भी स्वस्थ रहू, और अपन परिवार संगी साथी सबके स्वस्थ रखू। नशा स्त्री चाहे पुरुष के क्रोले सुरक्षित नखे, न तो शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से, ये तो दुयो रूप से घातक है, हमरे कर स्वास्थ्य ले।
1: हाँ, और नशा कर बुरा असर जो है से भले देर से दिखे दिसेला, लेकिन शरीर कर भीतरे नुकसान करे बहुत पहले है वो शुरू कर देवेला, से ले नशा से दूरी ही स्वस्थ जीवन बटे एगो मजबूत कदम है।
0: एकदम सही बोलली वन्ना बहन। अब आगे कर का विचार है?
1: आगे कर विचार है कि चलो सुनब एगो नागपुरी लोकगीत, जानकी देवी और संगी मनकर गावल।
0: एकदम चलो।

0: सकता आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो ये रहे विज्ञापन संदेश, और उकर से पहले हमरे मन सुन ली जानकी देवी और संगी मनकर गावल एगो नागपुरी लोकगीत। और चलो कार्यक्रम के हमरे मन आगे बढ़ाईला रानी बहन।
7: हाँ हाँ वंदना बहन, और जानी लो वंदना बहन, हमरे कर झारखंड कर ई धरती खाली जंगल पहाड़ और नदी कर धरती रखे, ये तो वीर मनक धरती भी है जे अपन माटी, अपन अधिकार और अपन सम्मान ले संघर्ष कर ले। और जब हमरे मन उ वीर मन के याद करीला तो इतिहास कर पन्ना में चार गो नाव जे है से बहुत सम्मान से सामने आवेला।
6: हाँ रानी बहन, और नाव है सिद्धू कान्हू चांद और भैरव।
7: हाँ
6: सिद्धू कान्हू कर संगे चांद भैरव का नाव भी लेल जायला। चांद भैरव सिद्धू कान्हू कर भाई रहे, इनकर दूगो बहन भी रहे। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में और कान्हू कर जन्म 1820 ईस्वी में हुए रहे। चांद और भैरव कर जन्म 1825 और 1835 ईस्वी के हुए रहे। इनकर बाबा का नाम रहे चुन्नी मांझी और इनकर जन्म स्थान भोगनाडी गांव रहे।
7: हाँ और बताल जा लो वंदना बहन, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्ती भोगनाडी क्षेत्र में लागू कर ले। इकर से एगो नवा जमींदार समूह खड़ा हुए गेलक, जेकर से माल गुजारी देवे में तनिको देरी होवल से जमीन के नीलाम कर देवल जात रहे, है नी?
6: हाँ हाँ, और ई जुलूम जे होलक सके सिद्धो कानो चांद भैरव सहे नहीं पारले और अंग्रेज कर खिलाफ उमने आंदोलन करे लागले। सिद्धू से बेरा 40 बरिस कर होए जाए रहे, और गांवे गांव साल पत्ते कर टहनी भेज के घरे घरे संदेश देवे लागले कि आप अबुआ राज स्थापित करे कर बेरा आए जा है। 30 जून 1855 पूर्णिमा आधा रात कर बेरा 400 गांव से 20,000 संथाली मन एक संगे जमा होले, और सिद्धू ई भीड़ में करो या मरो या अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो कर शुरुआत कर ले।
7: हाँ सिद्धू के संथाली मन राजा, कान्हू के मंत्री, चांद के प्रशासक और भैरव के सेनापति बना ले। वीरभूम कर रंगा सरदार और खेतारी सरदार कर पूरा सहयोग मन के रहे और कर देवेक से इमने मना कर दे। दामिन ई कोह के कब्जा में लेवे कर अंग्रेज मनक विरोध होवे लागलक। अंबर परगना कर राजमहल के 20,000 संथाली मन हमला करके अपन कब्जा में ले ले।
6: हुने मिस्टर चार्ल्स कर फैक्ट्री में आग लग गेलक और 11 जुलाई 1855 के 400 जवान मिस्टर टागोर कर नेतृत्व में मार्च करके 13 जुलाई के कदमसार पहुंचले, और संथाली मन कदमसार में महेशपुर कर राजा ऊपर आक्रमण भी कर ले। तो नौवी नेटिव इन्फेंट्री 3,000 संथाली मन के हरवाए दिले और भोगनाडी के जलाए दिले।
7: हाँ और चुन्नी मांझी कर हत्या अंग्रेज मन कर दिले। इकर से सिद्धू कान्हू कर आक्रोश और बढ़ गेलक। गोटा भागलपुर में मार्शल लॉ लागू कर गेलक। सिद्धू कान्हू के धरे के लिए इनाम भी रखल जा रहे।
6: और रानी बहन जानी ला कि बरकायत कर लड़ाई में चांद भैरव शहीद भी हो जा रहे, साथी मन कर चलते कान्हों के गिरफ्तार हुए होलक और कान्हों के ऊपर बंदा गांव में पकड़ के ले जाया गेलक। और सिद्धू भी बाद में बरकायत गिरफ्तार होले, और 6 जुलाई 1855 के सिद्धू के खुलेआम हुआ फांसी दे दिल गेलक, और उन्हें दिना कान्हों के भी भोगनाडी में फांसी दे दिल गेलक।
7: हाँ और चांद भैरव कर अगर बात करल जाए तो 1855-56 कर ऐतिहासिक संथाल विद्रोह हुल कर महान नायक और स्वतंत्रता सेनानी रहे। उमन आपन भाई सिद्धू और कान्हू कर संगे मिल के ब्रिटिश हुकूमत कर खिलाफ जंग के लड़ रहे।
6: चांद और भैरव झारखंड कर संथाल परगना कर भोगना डी गांव का रहे वाला संथाली आदिवासी रहे। ये तो हमरे मन तक ने बातचीत कर ली और उमने संघर्ष में दुयो बहन फूलो और जानो भी अंग्रेज मन के खिलाफ तलवार उठा ले। ईस्ट इंडिया कंपनी कर गलत कानून जमींदार मन और साहूकार मन महाजन मन आदिवासी मन कर जल जंगल जमीन ऊपर कब्जा करे लागले और उमनक आर्थिक शोषण भी करे लागले।
7: 19वीं शताब्दी में संथाल क्षेत्र में अंग्रेजी शासन कर प्रभाव बढ़ते जात रहे। संथाल किसान और आदिवासी समुदाय ऊपर जमींदार और महाजन मनक दबाव बढ़ते गेलक। कर्ज बगरा ब्याज भूमि से हटाई और शोषण कर चलते आदमी मन में असंतोष पसरे लागलक।
6: चांद और भैरव झारखंड कर महान आदिवासी क्रांतिकारी मन में से रहे। उ संथाल हुल कर मुख्य नेता मन में शामिल रहे और संथाल हुल अंग्रेजी शासन जमींदार साहूकार और शोषणकारी व्यवस्था कर खिलाफ संथाल समाज बटले एगो ऐतिहासिक विद्रोह कर रहे।
7: हाँ, और इमन संथाल समुदाय में एकता और साहस कर भावना के डाल दिले। उमन कर उद्देश्य खाली अंग्रेज मनक विरोध करे नहीं रहे बल्कि आपन आदमी मनक शोषण और अन्याय से मुक्त कराए भी रहे।
6: और 30 जून 1855 के भोगनाडी में संथाल मन अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था कर खिलाफ विद्रोह कर बिगुल फूकले और हजारों संथाली मन ई आंदोलन से जुड़ल होले और संथाली योद्धा मन अपन पारंपरिक हथियार और सामूहिक शक्ति कर संगे अंग्रेजी शासन कर सामना कर ले।
7: एकदम हिम्मत से साहस से है नहीं। अंग्रेज मन संथाल हुल के दबाई कर बहुत कोशिश कर ले। संघर्ष कर बिरा चांद भैरव सहित कई गो संथाल योद्धा मन अपन प्राण के त्याग दिलाए। उनकर बलिदान आवे वाला पीढ़ी के साहस एकता और अन्याय कर विरुद्ध संघर्ष कर मिसाल बनलक।
6: चांद और भैरव के झारखंड कर आदिवासी इतिहास में सेल याद करल जाएला कि वो अपन समाज कर अधिकार और सम्मान ले संघर्ष कर ले। उनकर जिंदगी ये संदेश देवेला कि अन्याय और शोषण कर विरुद्ध हमरे मन के एकजुट होके आवाज उठाए के चाहिए।
7: हाँ, एकदम। चांद भैरव सिद्धू कान्हू और दूसर संथाल योद्धा मनक संघर्ष झारखंड कर वीरता और आदिवासी अस्मिता कर इतिहास कर एगो महत्वपूर्ण अध्याय हके। संथाल हुल में उनकर योगदान और बलिदान आज भी हमरे के साहस एकता और अपन अधिकार ले संघर्ष करे कर प्रेरणा देवे। और जानी लवन्ना बहन कहल जाए ला ना कि विद्रोह काल में सिद्धो कर जे बहोरिया रहे सुमी उनकर बहुत बड़ी योगदान रहे और वो विद्रोही मन कर मदद भी करत रहे।
6: एकदम सही कली रानी बहन। तो हमरे मन के जरूर याद करे के चाहिए
7: एकदम
6: और इमन कर सम्मान रखे के चाहिए
7: एकदम।
6: चलो आप सुनब देशभक्ति से जुड़ल एगो नागपुरी लोकगीत बसीर अंसारी और संगीमन कर गावल।
7: चलो

0: हाँ तो राहिन रानी बहन एखन हमरे मन सुनली धर्मू नायक और संगी मनकर गावल गीत कैसन लागल गीत बोलो।
1: बहुत बहुत बेस लागल और सुनवैया मन के भी बहुत बेस बुझाए हुई का
0: एकदम एकदम। और देखो रानी बहन एखन आज हमरे मन कते बढ़िया बात कर ली कि नशा जे होवेला से बहुत नुकसानदेह होवेला और उकर बादे हमरे कर धरती कर जे वीर स्वतंत्रता सेनानी मन कर जीवन संघर्ष कर बारे में आज हमरे मन जान ली। ई बात से एगो बात तो साफ हो जाए कि हमरे के अपन जीवन समाज और आवे वाला पीढ़ी ले जे है सेकर प्रति बहुत बड़ जिम्मेदारी हमरे मन के निभाए है। कहो
1: एकदम ठीक बोलली वंदा बहन और यह जिम्मेदारी कर बात के चलो आगे बढ़ाई ला और ऊ चीज कर बारे अब बात करी ला जे हमरे कर रोजमर्रा कर जिंदगी कर हिस्सा तो बन जा है लेकिन पर्यावरण खातिर बहुत बड़ चुनौती बन जाते और वो चीज है प्लास्टिक।
0: सही कहली रानी बहन। और देखो नहीं आज बाजार में हमरे मन कोनो सामान लेवे जाइला चाहे वो सब्जी होवे फल होवे चाहे कोनो भी सामान होलक तो प्लास्टिक कर थैला बहुत आसानी से हमरे मन के मिल जाइला और है और अपन सुविधा कर चलते प्लास्टिक का इस्तेमाल भी हमरे मन करीला और दुकानदार मन के भी कहो तो सस्ता पड़ेला।
1: हाँ लेकिन उकर बाद जब वह प्लास्टिक के हमरे मन हिने हुने कहीं भी फेंक देवीला तो इकर से माटी पानी और आसपास कर वातावरण के बहुत नुकसान पहुंचेला जे हमरे मन ले तो ठीक नखे और साथ पशु पक्षी खातिर भी ई नुकसानदायक होवेला।
0: सही कर ली। और सबसे बड़ बात ये है कि प्लास्टिक जो है से आसानी से नष्ट नहीं होवेला और आज हमरे मन ले प्लास्टिक कचरा जे फेंकत थी उकर असर लंबा समय तक हमरे कर धरती कर ऊपरे बनले रही।
1: हाँ जे हमरे मन ले है ठीक नखे से ले जरूरी है कि प्लास्टिक के पूरी तरह से खत्म करे कर बात करे से पहले उकर अनावश्यक इस्तेमाल के कम करे ज्यादा जरूरी है काले की वरना बहन खाली बात कर ले है तो नहीं हुई कुछ कामो करे पड़ी का।
0: एकदम सही। और बाजार जाए के बेरा कपड़ा या जूट कर थैला के हमरे मन के अपन संगे रखे के चाहिए और एक बार प्लास्टिक का इस्तेमाल होवे वाला चीज लेवे से जरूर हमरे मन के बाचे के चाहिए और सबसे जरूरी है कि कचरा के कहीं भी फेंके कर सही जगह हमरे मन के देखे के चाहिए काले की देखो पर्यावरण का सुरक्षा खाली सरकार या एगो संस्था कर जिम्मेवारी नखे बल्कि हमरे कर देश कर हरेक नागरिक कर है। छुआ मन के हमरे मन के बुझाए के चाहिए और अपनों हमरे मन के ध्यान रखे के चाहिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हमरे मन के कम से कम करे को भी।
1: हाँ एकदम नखे करे की ठान लेवे कोई काले की याद रखू की हमरे मन प्रकृति से बहुत कुछ लेवेला हमरे कर पूरा जिंदगी प्रकृति पर ही निर्भर है से ले उके सुरक्षित राखे कर भी हमरे मन कर जिम्मेदारी है। सुविधा से जरूर ज्यादा जरूरी है सुविधा तो जरूरी है ये है लेकिन उकर से ज्यादा जरूरी है पर्यावरण के प्रति अपन जिम्मेदारी के निभाए
0: और आइज प्लास्टिक कर कम इस्तेमाल करके शायद एगो हमरे के छोट कदम लागी लेकिन ऐसने छोट छोट कदम से आवे वाला पीढ़ी ले स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण तैयार होवी और ऊ मन के मिली एगो स्वस्थ वातावरण काले की प्रकृति खाली हमरे का जरूरत के पूरा करे वाला साधन न के ई तो हमरे कर आज कर जीवन कर सबसे बड़ जरूरत है और आवे वाला पीढ़ी कर खातिर सबसे

0: बड़ धरोहर भी है जिके हमरे मन के बचाए के चाहिए।
1: हाँ, संभराए के है और मन के एकदम हरियाली भरल प्रकृति देवे हमरे मन कर जिम्मेदारी तो है, का कही ला?
0: एकदम सही कह ली, सेले प्लास्टिक से अपने के दूर रखो और पर्यावरण के बचाओ।
1: हाँ, और जैसे पानी कर बोतल होवेला, चाहे पेय पदार्थ कर जे बोतल होवेला, उकर प्लास्टिक कर जे बोतल मन होवेला ना, उकर जगह तांबा, स्टील, चाहे कांच कर बर्तन जे होवेला, उकर प्रयोग कर ले ज्यादा बेस रही है कि नहीं?
0: एकदम सही कह ली। तो सुनवैया बहिन मन, रौरे मन जरूरी बात के सुन ली और दियो जानकारी के जरूर अपन जीवन में रौरे मन उतराब। तो हाँ, हमरे कर जायकर बेरा होते रानी बहिन।
1: हाँ,
0: अगला सोमवार के हमरे मन फिर अपन कार्यक्रम कर संगे गोठियाब। तब तक खातिर देव विदा, जोहार
1: जोहार।

बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में, और इस कार्यक्रम को लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त आभा। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहला गाना सुनिए फिल्म बेवफा से, उदित नारायण की आवाज में, रचना समीर की, संगीत नदीम श्रवण का।

है तेरा सपना सजा लूं, दिल करता है तुझे अपना बना लूं, दिल करता है तुझे दिल में छुपा लूं, दिल करता है तुझे

दोस्तों, रिमझिम फुहारों, ठंडी बयार और मन को मोह लेने वाले बादलों के संग आइए आज के इस अंक में सुनते हैं सावन के गीतों और बारिश के नगमों का एक बेहतरीन गुलदस्ता। फिल्म चुपके चुपके से गायिका है लता मंगेशकर, रचना आनंद बख्शी की, संगीत एस टी बर्मन का।

दोस्तों, सावन सिर्फ बारिश नहीं बल्कि प्रेम और उमंग का पैगाम लेकर आता है। और जब बात बारिश के गीतों की हो तो किशोर दा को कैसे बुलाया जा सकता है। सुनिए फिल्म मंजिल में किशोर कुमार की जादुई आवाज में। संगीतकार हैं आर डी बर्मन और गीत को लिखा है योगेश ने।

फिल्म संगीत का अगला गाना है फिल्म दिल है तुम्हारा से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की। बोलो को लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, सावन में बादलों की घूमड़ घूमड़ और पूर्वा हवा का एहसास ही कुछ निराला होता है। तो पेश है एक और सुरीला नगमा, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म अनजान से, आनंद बख्शी का लिखा और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए, फिल्म सनम बेवफा से। इस गाने में सुरीली आवाज है लता मंगेशकर की, रचना सावन कुमार का और संगीत महेश किशोर का।

दोस्तों, सावन की इन सुहानी धुनों और यादों के साथ अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आपको हमारा यह सफर पसंद आया होगा। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति

अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 87 crore rupees to the Congress party for fighting elections. The police arrested the BJP legislators from the assembly and council when they tried to march to the Vidhan Sabha, the state secretariat building. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh till tomorrow. Benchmark domestic equity indices were trading lower in the afternoon session today. The Sensex dropped 258 points to 77,283, while the Nifty fell by 71 points to 24,181 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर दिशोम गुरु शिव सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज होगी यात्रा। अंतिम सोमवारी पर देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, 3.5 लाख से अधिक भक्तों के जलाभिषेक का अनुमान। वासुकीनाथ में 4 किलोमीटर तक लगी कतार। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। गढ़वा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब, झारखंड की टीम उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज और रिकॉर्ड्स जब्त किए। सीआईडी टीम ने जांच में रांची के एक कोचिंग में मौजूद रिकॉर्ड खंगाले और निदेशक पर भी कार्रवाई कर परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े साक्ष्य जुटाए। अधिकारियों के अनुसार हजारीबाग में दूसरे बड़े कोचिंग सेंटर में भी जांच की गई। जब्त सामग्री की जांच के बाद अब अभ्यर्थियों, कोचिंग नेटवर्क और परीक्षा से जुड़े डिजिटल तथा अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में छात्रों पर लाठीचार्ज और 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर के मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मुकदमा वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ भाजपा खड़ी है और एफआईआर वापस नहीं होने पर छात्र डरे नहीं बल्कि जेल भरो आंदोलन करें।
2: पार्टी पूरी तरह से उन छात्रों के साथ है और सरकार से मैं मांग करता हूं, जो आपने एफआईआर किया है उसको वापस लीजिए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो नौजवानों से अपील है, अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो आप जेल से मत डरो, जेल को छोड़ देना।
1: जेपीएससी जेएसएससी में पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर चल रहे अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आज दिशोम गुरु शिव सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से होगी। ये जानकारी आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने दी। उन्होंने बताया कि भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टांड़ से शुरू होकर झारखंड के सभी जिलों से होते हुए रांची पहुंचेगी। देवेंद्र नाथ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की मांग को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही।
3: आने वाले परीक्षाओं पर पेपर लीक ना हो, धांधली नहीं होगी, पैरवी से नौकरी नहीं होगा, इसका गारंटी चाहिए। ऐसा हम लोग को रिफॉर्म चाहिए। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को भी जोड़ा जाए। क्वेश्चन पेपर को जो कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना हो, कॉपी जांच करना हो, पूरी तरीके से गोपनीयता, पारदर्शिता का जो भी नियम है उसका पालन, और भविष्य में पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो आने वाले युग युग पर, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग नहीं चाहते कि दूसरा किसी को लड़ना पड़े।
1: सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मेस शुल्क बढ़ोत्तरी और भोजन के खराब गुणवत्ता के विरोध में छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना चर्चा के फीस बढ़ाई और गुणवत्ता में सुधार की बजाय गिरावट आई। छात्रों ने बढ़ी फीस तत्काल वापस लेने, मेन्यू तय करने में भागीदारी और वेंडर पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन

0: वार्ता से समाधान का प्रयास कर रहा है, पर छात्र लिखित आश्वासन पर अड़े हैं। रांची में आयोजित आदिवासी आत्म मंथन शिविर में महली समाज सहित आदिवासी संगठनों ने स्वशासन, पेशा, जल जंगल जमीन और युवा नेतृत्व पर मंथन किया। इस दौरान पढ़ा समन्वय परिषद ने कहा कि पेशा कानून लागू होना सराहनीय है, लेकिन ग्राम सभा गठन में अनियमितता और पारंपरिक परिसीमन की अनदेखी से खजाने के दुरुपयोग की आशंका है। परिषद ने 26% के बजाय 10.4% ही आरक्षण मिलने, नौकरियों में आउटसोर्सिंग से बंधुआ मजदूरी, बालू के अवैध उठाव और मातृभाषा में शिक्षा न होने से 9000 स्कूल बंद होने पर कड़ा एतराज जताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर राजकीय श्रावणी मेले की चौथी और अंतिम सोमवारी पर बाबा नगरी में श्रद्धालुओं और कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन के अनुसार आज करीब 3.5 लाख कांवरियों के बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 की चौथी और अंतिम सोमवारी पर आज बाबा नगरी में एक बार फिर कांवरियों और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रशासन के अनुसार आज करीब 3.5 लाख से अधिक कांवरियां बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलाभिषेक करने वाले हैं। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमारिया, प्रवीण पुष्कर, SP पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। सावन मास की चौथी सोमवारी पर दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। इसी के साथ आज से वार्षिक झूलन उत्सव का भी प्रारंभिक तरीके से शुरुआत हो जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: इधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेले की अंतिम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ ने पिछली 3 सोमवारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुबह 3 बजे से अर्घा के माध्यम से जलार्पण शुरू हुआ और भक्तों की कतार करीब 4 किलोमीटर तक पहुंच गई। भागलपुर से गंगा जल लेकर आए करीब 3000 डाक कांवरियों ने भी बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी है और लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के कारोबार में शुरुआती बढ़त गंवाकर गिरावट में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 204 अंक गिरकर 77,337 पर और निफ्टी 67 अंक की गिरावट के साथ 24,185 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,51,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रुपए प्रति किलो है। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन सफाया के तहत पांकी थाना क्षेत्र से 3 शातिर अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पलामू के SP कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से कार्बाइन, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। तीनों आरोपी चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
2: रिकवरी के समय इनके पास से 1 देसी कार्बाइन, 7 गोली, 1 खोखा, 1 मैगजीन और 2 बाइक बरामद हुई है। पूर्व में भी इनके द्वारा लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और NDPS के केस में इनको कांड दर्ज हुए इनके अगेंस्ट में, और इसी क्रम में पुलिस के द्वारा बहुत अच्छे से कार्य करते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई है। व्यक्तियों को वहां से खदेड़ कर पकड़ा।
0: मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हॉकी। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने झारखंड को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं झारखंड की टीम

उप विजेता रही। हॉकी झारखंड की जूनियर महिला टीम 2018, 19, 24 और 2025 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर चुकी है, जबकि कई बार उप विजेता भी रह चुकी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी ने रांची और हजारीबाग के कोचिंग संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज जब्त। जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की मांग को लेकर दिशम गुरु शिवू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से आज शुरू होगी यात्रा। अंतिम सोमवारी पर देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, 3.5 लाख से अधिक भक्तों के जलाभिषेक का अनुमान, बासुकीनाथ में 4 किलोमीटर तक लगी कतार। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। गढ़वा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने झारखंड को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप का जीता खिताब, झारखंड की टीम उपविजेता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत अनुरंजनी। आज की कलाकार हैं सिप्रा बोस, इनसे सुनेंगे मिश्र खमाज ठुमरी, गजल दादरा और बरमासा दादरा।

इसी के साथ सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। थोड़ी ही देर में मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: We have about 80 companies.
2: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विषाक क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आर्गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance.
0: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और

0: उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
2: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
3: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
1: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज PMFME सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
4: PMFME की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीरा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गति

0: गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुस जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुस जलडमरू मध्य को नए अमरीकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमरीकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत 8-9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। मीडियम

भी 546, दशमलव 4.5 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का राज्य केंद्र है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती, और इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आभा। आप सभी श्रोताओं को शुभ दोपहर। दोस्तों, हवाओं से नहीं, फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। वो तिरंगा जिसे हम त्योहारों में थामते हैं, वो रोज किसी फौजी के खून पसीने और अधूरी नींद से जिंदा रहता है। जब हम अपनों के साथ हंस रहे होते हैं, तब कोई सरहद पर खामोशी से खड़ा अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की तस्वीर जेब में रखकर पूरे देश का घर संभाल रहा होता है। उसे ठंड नहीं लगती क्योंकि वर्दी के नीचे वतन की आग जलती है। उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसके दिल में तिरंगे का भरोसा बसता है। हर गोली से पहले उसकी एक ही दुआ होती है, मेरे बाद भी मेरा भारत सुरक्षित रहे। हमारे लिए आजादी एक एहसास है, पर उनके लिए एक जिम्मेदारी। हमारे लिए तिरंगा एक पहचान है, पर उनके लिए सांसों से बंधा एक वादा। तो हम सलाम करते हैं उन फौजियों को जो जीते भी देश के लिए हैं, और जरूरत पड़े तो मुस्कुराते हुए मर मिटते हैं हमारे भारत माँ के लिए। तो कार्यक्रम की पहली शुरुआत करते हैं उदित नारायण और सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों के साथ। फिल्म है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, संगीत अनु मलिक का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: अब सुनिए 1997 की सुपर हिट देशभक्ति और रोमांटिक फिल्म बॉर्डर का मधुर गीत. इसे रूप कुमार राठौर ने अपनी शानदार आवाज दी है, संगीत अनु मलिक ने तैयार किया है और इसके बोल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं.

इसी के साथ फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग सहित सभी पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष जांच के लिए मामला राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार की जेपीएससी परीक्षा रद्द करने के

0: फैसले पर रोक लगा चुका है और राज्य सरकार को 15 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आज से जेपीएससी जेएसएससी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा झारखंड के सभी जिलों से होकर गुजरेगी और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर अभियान चलाएगी। एक अन्य घटनाक्रम में रांची पुलिस ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम के एक्स अकाउंट की जांच शुरू कर दी है और अकाउंट संचालक की जानकारी हासिल करने के लिए एक्स कॉर्प के लीगल सेल को नोटिस भेजा है। राज्य में छात्रों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की तीखी निंदा की है। बोकारो में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग अनुचित है। श्री मुंडा ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
1: आज सीबीआई जांच में ये सरकार कोताही क्यों बरत? राज्य सरकार में अगर ईमानदारी है तो निष्पक्ष जांच कराए। हमें इसे कोई लेना देना नहीं है कि सरकार ने गलत किया या सही किया है। छात्र मांग कर रहे हैं और छात्र के मांग के अनुसार वो अपना फैसला बताए कि हम करने के लिए तैयार है, बस इतनी बात है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोकभवन में 18वीं वर्ल्ड अर्नेस्ट चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों ने मुलाकात की। नई दिल्ली में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर राज्यपाल ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। राज्यपाल ने विजेताओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित जिला स्कूल में 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। राज्यभर से आए छात्रों ने इसमें विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
2: हर जिले से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और अपना उनके दिमाग में जो भी क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है और हम लोगों को दिखा। बच्चे एक तो हमारे साइंस की ओर बढ़ेंगे, हमारे एक से एक इनोवेशन करेंगे, यही बच्चे तो हैं जो आगे आविष्कार करेंगे और नए नए इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हमारा जीवन और सुगम होगा।
0: श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर राज्य के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक है, से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे से राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने राज्य में 28 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। गुमला, सिमडेगा, लातेहार और खूंटी सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए
0: जी। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले, संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं
0: जी। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं,
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
2: कोडागू को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागू जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागू ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागू में हर साल कोडागू हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
2: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं
0: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
2: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा
0: जी। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
2: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं के, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए
0: जी। और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।

0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ आपको टाइप करना है,
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे।
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
4: अलग होकर खिसकने लगे?
3: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
4: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
3: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग

0: 3-4 सेंटीमीटर बस।
1: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
1: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
2: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
1: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब।

0: अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
2: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।

0: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
1: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
0: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
1: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थी।
0: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य में पड़ जाता।
2: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: ये किस तरह की मूर्ति है?
4: ऐसी मूर्ति तो मैंने
5: वाओ वंडरफुल।
1: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा?
0: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
1: मूर्ति के हाथ नहीं थे, लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
0: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
1: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
2: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
3: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?

ये गाना है फिल्म साजन से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, रचना समीर की और संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं यह प्यारा सा गीत जो आपकी शाम को और भी खुशनुमा बना देगा। आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है आनंद। योगेश के बोल हैं, संगीत सलील चौधरी का।

ये था रांची मेलोडीज का एक छोटा सा सफर। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नगमों के साथ। तब तक के लिए आभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रांची से आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग सहित सभी पक्षों से जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 24 सितंबर को तय की है। हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव में देश के कोने कोने से आई महिला उद्यमी एमएसएमई योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहली बार स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने बताया कि केंद्र सरकार व्यापार के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दे रही है। सावन के अंतिम सोमवार को मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध खूंटी के बाबा आमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे से ही भक्तों ने कतारबद्ध होकर अनुशासित ढंग से जलाभिषेक किया। मंदिर प्रबंधन, जिला प्रशासन और स्वच्छता कर्मियों द्वारा सुरक्षा, साफ सफाई और महाप्रसाद की व्यापक व्यवस्था की सराहना की गई। मौसम विभाग ने राज्य में 28 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से

तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ साथ चलें, जिसमें चर्चा होगी ग्रामीण विकास का उद्देश्य, साथ ही भेंटवार्ता, प्रखंड का विकास आज की आवश्यकता। भेंटवार्ताकार होंगे ओरमांझी के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री कामेश्वर बेदिया और इनसे बातचीत करेंगी सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की।

श्रोताओं, कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम ग्रामीण विकास, आज की जरूरत, इस विषय पर थोड़ी सी बातचीत आपसे करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 65 से 70% जनसंख्या गांवों में रहती है। गांव केवल खेती का केंद्र ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के मूल स्तंभ भी होते हैं। श्रोताओं, लेकिन आज भी कई गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, बिजली और रोजगार के अवसर। यही कारण है कि ग्रामीण विकास आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। ग्रामीण विकास का अपना एक महत्व होता है। आर्थिक उन्नति देखी जाती है, मसलन खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों के विकास से ग्रामीण लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है। शहरी पलायन में कमी आती है, गांव में ही रोजगार मिलने से लोग शहरों की ओर पलायन कम करते हैं। सामाजिक संतुलन भी बना रहता है, गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से जीवन स्तर बेहतर होता है। और फिर हम सब देश की प्रगति की बात करते हैं, तो जब गांव मजबूत होंगे तभी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। श्रोताओं, जब हम विकास के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कई चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। शिक्षा और तकनीकी की कमी, बेरोजगारी, खराब सड़क और यातायात सुविधा, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, खेती में आधुनिक साधनों की कमी, ये चुनौतियां हैं हमारे विकास के मार्ग में, विशेष तौर से गांव के विकास में। इसके समाधान और इसके लिए पहल भी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन इस ओर पहल कर रहा है। कृषि में हमेशा नई नई तकनीक को जोड़ा जा रहा है, जैसे सिंचाई की आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, ड्रोन और AI आधारित खेती। शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है, ग्रामीण युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास केवल सरकार का काम नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। दोस्तों, जब गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध होंगे तब ही भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ पाएगा और हम कह सकेंगे कि गांव बढ़ेगा, देश चढ़ेगा, ग्रामीण विकास से भारत खिलेगा। श्रोता मित्रों, गांव के विकास में प्रखंड और पंचायतों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये ग्राम

0: ग्रामीण प्रशासन और विकास योजनाओं को लागू करने की प्रमुख इकाई मानी जाती है। प्रखंड की गांव के विकास में अहम भूमिका है। प्रखंड जिला और पंचायत के बीच की प्रशासनिक इकाई है जो कई ग्राम पंचायतों को मिलकर बनता है। विकास योजनाओं का समन्वय इसका प्रमुख कार्य है। ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, आवास जैसी योजनाओं को लागू करना, फिर तकनीकी सहायता, कृषि विशेषज्ञ, पशुपालन अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि के माध्यम से गांवों को सलाह और प्रशिक्षण देना, वित्तीय प्रबंधन, सरकारी अनुदान और योजनाओं की राशि का वितरण और निगरानी। इसके अलावा निरीक्षण और मूल्यांकन का कार्य भी प्रखंड स्तर पर किया जाता है। पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और सुधार के सुझाव भी दिए जाते हैं। संकट के समय क्या प्रबंधन होना चाहिए, इस पर भी विशेष जोर दिया जाता है। जैसे बाढ़, सूखा, महामारी जैसी आपदाओं के समय राहत कार्यों का संचालन। श्रोताओं, प्रखंड के बाद पंचायतों की भी भूमिका गांवों के विकास में बेहद जरूरी है। पंचायत गांव की सबसे निचली और सीधी प्रशासनिक इकाई है जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। इसकी भी कुछ प्रमुख भूमिकाएं हैं, जैसे स्थानीय विकास कार्य, कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, मसलन मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन वितरण जैसी योजनाएं, और कृषि और सिंचाई में सुधार, खेतों की सिंचाई व्यवस्था, कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, बीज और खाद का वितरण कराना। इसके अलावा सामाजिक न्याय और जन भागीदारी भी बेहद जरूरी है। विवादों का निपटारा, बाल विवाह, दहेज और नशा जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाना, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों की राय लेना और विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। श्रोताओं, प्रखंड योजनाओं का समन्वय तकनीकी सहायता और निगरानी करता है और पंचायत योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन और जनता से सीधा संवाद करती है। दोनों मिलकर गांवों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, ये जितनी भी बातें हमने की, ये गांव के विकास में प्रखंड और पंचायत स्तर पर किस तरह योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और मांझी श्री कामेश्वर बेदिया। इनसे विस्तार से जानते हैं कि प्रखंड में किस तरह की सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है और इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब इन योजनाओं को क्रियान्वित करना होता है या फिर इसे धरातल पर लाने की कोशिश की जाती है। तो सुनते हैं ये बातचीत। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि गांव के विकास के लिए भी हैं और साथ ही साथ जिला और प्रखंड स्तर पर भी इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि ओरमांझी प्रखंड में किस तरह की योजनाओं को अभी देखा जा रहा है।
1: हाँ, जैसा कि सरकार के, भारत सरकार होगी या राज्य सरकार होगी, दोनों की योजनाएं हैं और प्रखंड स्तर पर हम लोग जो है कि धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं। इसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना है जो एक फ्लेक्सिव स्कीम है और एक टारगेट बेस पर सभी के घर में छत हो। तो हमारे प्रखंड में सेक डाटा से लेकर के सूचीबद्ध जितने भी लाभुक हैं, हम लोगों ने मिलकर के 100% उन लाभुकों को आवास से आच्छादित कर दिया। रेस्ट कुछ ऐसे लाभुक जो बचे हैं, हाल ही में 2 महीना पहले हम लोगों ने पूरे सर्वे कराया है एक एक घर के, और उन घरों की लिस्टिंग हो रही है, उसका सत्यापन हो चुका है। बहुत जल्द जो है कि उन सभी लाभुकों घर के लिए, उनका अपना एक सपना का घर के लिए हम लोग दे पाएंगे। इसी के साथ साथ में राज्य सरकार की आवास योजना में अभुआ आवास योजना है। इस अभुआ आवास योजना में 3 कमरे की पक्का मकान बनानी है। इसमें भी हम लोगों को जो टारगेट थी और मांझी प्रखंड की, हमने 100% जो टारगेट था उसकी स्वीकृति 100% दे दिया है। और लाभुकों में प्रधानमंत्री आवास

या बुआ वास हो, इतनी उत्सुकता से बना रहे हैं कि वो जो है हम लोग गृह प्रवेश करा रहे हैं। और आग्रह रहेगा उन लाभुकों को कि जिन्हें भी अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है वो जल्द से जल्द जो है कि निर्माण कार्य पूर्ण कराएं और गृह प्रवेश कराएं और अपने सपनों का घर को साकार करते हुए देखें। इसी के साथ साथ में कुछ कल्याणकारी योजनाएं जो है, जैसे मैया सम्मान योजना, इस मैया सम्मान योजना के तहत में हमारे 16,000 महिलाओं को, मैया लोगों को और मांझी प्रखंड से आच्छादित किया गया है और 6,000 और हैं लाभुक जिनको किसी कारण से उनकी आधार KYC नहीं हो पाया है, उसके कारण से उसके खाते में पैसा जाने में त्रुटि हुई है, तो हम लोग उसकी समाधान में अग्रसर लगे हुए हैं। और एक अच्छी पहल ये है कि हमारे उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार और हमारे जो है कि क्षेत्रीय पंचायत के टीम के अनुसार ये जो मैया सम्मान योजना की जो राशि है उससे उस राशि का उपयोग जो है सकारात्मक रूप में स्वावलंबी बनने के लिए, कोई मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई बतख पालन कर रहे हैं, कोई अंडा के लिए व्यवसाय में, कोई उसी राशि से, हाल ही में एक हमारे महिला दीदी आई थी, उसने कही कि हम तो जो है कि छोटा सा दुकान खोल लिए, तो इस तरह से उस राशि का सदुपयोग भी काफ़ी अच्छे तरह से हो रहा है, तो हम लोगों को भी खुशी लगती है कि चलिए उस राशि का सदुपयोग हो रही है। और आग्रह रहेगा कि जिन मैयाओं को इनकी राशि आ रही है वो जो है कि उसका सदुपयोग ही करें। दूसरा, और कल्याणकारी योजनाएं में राज्य सरकार के और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पेंशन योजनाएं हैं, वृद्ध पेंशन योजनाएं हैं, दिव्यांग पेंशन योजनाएं हैं, विधवा पेंशन योजनाएं, इन सभी योजनाओं को हम लोगों ने पूरी 100% हम लोग कर चुका था, लेकिन फिर से इलिजिबल होते जा रहे हैं क्योंकि इसकी क्राइटेरिया 60 वर्ष है और राज्य सरकार की एक योजना हो गई है सर्वजन पेंशन, उसमें जो है कि हम लोग 50 साल से हम लोग लेते हैं, तो आए दिन जो है कि जो इलिजिबल होते जा रहे हैं आवेदन आती है तो हम लोग ने उसकी स्वीकृति देते चला है। अब विकास योजनाएं में जो हम देख पाते हैं हम अपने क्षेत्र में और मांझी में, तो मनरेगा एक अहम भूमिका निभाती है विकास योजना करने में, इससे रोजगार भी मिल पा रहा है वहाँ पे क्षेत्र में। और मनरेगा के तहत जो है योजना है, मेरे हिसाब से जो है कि मनरेगा की सभी योजनाएं एक लाभकारी फ्रूटफुल स्कीम है और इस स्कीम में जो है कि हम बेसिक तौर पर देखें तो एक बागवानी योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना के नाम से है। इस योजना के तहत में जो आज से 3 साल पहले जो इसके लाभ ले चुके हैं वो देखने लायक है, क्योंकि वहाँ से उसकी उत्पादन भी हो रही है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधार होने लगी। वो लाभों कितने मेहनत करके उस आम बागवानी का और मिश्रित बागवानी है उसका लाभ लेकर के वो जो है कि आर्थिक आमदनी अपनी आय बढ़ा रहे हैं। उसी तरह सिंचाई के लिए कुआं की योजना है, मनरेगा से कुआं बना सकते हैं और जब पशुपालन विभाग के द्वारा से किसी को पशुपालन की योजना से आच्छादित किया जाता है तो हम लोग उनको जो है कि शेड मुहैया कराते हैं और मनरेगा के थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं, तो इससे जो है कि संपूर्णता देखिएगा कि एक ही एक लाभुक जो है कि कैसे अपने आर्थिक आमदनी को बढ़ाएंगे, उसी में अगर आप जो है कि पशुपालन की तरफ चलते हैं, मुर्गी पालन की तरफ चलते हैं तो आपको जो है कि उसकी लाभ भी मिलेगा, सेट भी मिले। इस तरह से कुल मिलाकर के समावेशी को ध्यान में रख करके ये एक अच्छी तरह से संचालित होती है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो है कि जो भी बेनिफिशरी हैं इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन आग्रह रहेगा कि ये पूरी तरह से संचालित हमारे जो है कि पंचायत लेवल पे जो मशीनरी है उनके माध्यम से होती है, पंचायत के मुखिया होगी, पंचायत सचिव होगी, ये सभी और वहाँ पे GRS हो गए जिसको रोजगार सेवक कहते हैं, वहाँ से संचालित होती है, रिकॉर्ड खुलती है, योजना का चयन होता है, ग्राम सभा से पारित होता है और यह प्रक्रिया करते हुए फिर इसकी जो है संचालन होती है। और इसी के तहत में जो है कि आए दिन विकास योजना में आप देख पाएंगे कि कई ऐसे सड़कें हैं जो कि अभी नहीं बन पाई है, तो हम लोगों ने जो मनरेगा के तहत 2 तरह का सड़कें अभी बनाने का काम कर रहे हैं, एक मिट्टी मोरम सड़क है, दूसरा एक JSB रोड है, कंक्रीट मिक्स वाला।

0: तो ये सड़कें से उन क्षेत्रों में हम लोग चयन करके देते हैं कि जहाँ पे लोग जो आने जाने में दिक्कत हो रही है, और वो सड़क बन जाने से उसके जो है कि संपर्क साधन हमारे जो है कि शहर से अच्छी खासी जुड़ जा रही है। ध्यान हम लोग इसलिए इसमें दिए हैं कि वहाँ पे भी निवास लोग करते हैं और वहाँ के बच्चे को आने में दिक्कत होती है। मैं हाल ही में एक और योजना है, हाल ही में उस योजना का वितरण कर रहे थे माननीय विधायक के साथ में, वो उन्नति की पहिया जो साइकिल वितरण योजना है, तो वहाँ के बच्चे आए थे हमसे यहाँ पे साइकिल लेने के लिए। तो वहाँ के बच्चे बताए कि सर हम लोगों की सड़क नहीं है। तो मैं इस पे जो है कि संज्ञान लिया हूँ और इसको जो अग्रेतर आगे आगे जो है इस योजना का कैसे धरातल पर उतारा जाए उसको जो है कि तैयारी हम लोग करें। तो ऐसे ऐसे लोग जो है कि संज्ञान में लाए हैं,
1: जी
0: तो उन्नति की पहिया साइकिल कैसे चलाएगा, सड़कें नहीं रही, तो उसको जो है मिट्टी मोरम रोड के तहत हम लोग जो है कि उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष तौर पर हम लोगों ने एक प्रखंड क्षेत्र पर JSLPS की टीम चलती है। JSLPS के माध्यम से महिलाओं में जो जागरूकता फैलाने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, वही महिलाएं हमारा कहीं ना कहीं बेनिफिशरी है, लाभुक हैं। उन सभी को जो कि अगर एक महिला, घर की एक महिला जागरूक हो जाए, सशक्त हो जाए, तो हम समझते हैं कि विकास की कोई भी पैमाना हो उसको लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें कोई दूरी या कोई कठिनाई नहीं हो पाए।
1: सही बात है।
0: तो इस रूप में हम लोग को महिला सशक्तिकरण के तहत में SHG ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो कि SHG ग्रुप है कि 18 पंचायत में 88 राजस्व गांव में SHG ग्रुप 1746 ग्रुप बन गया है, और 1700 ग्रुप में सभी इसको 10 से हम गुना कर देंगे, एक ग्रुप में 10 महिला होती हैं। तो हमें जो है कि 17460 महिलाएं इसमें एक्टिव मोड में जुड़ी हुई। और इस जो SHG ग्रुप के एक और खासियत की है कि एक और उसकी विंग है, ये है जेंडर रिसोर्स सेंटर। लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको दूर करने की काम करती है। कहीं भी किसी प्रकार की महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, हिंसा होती है, तो उसमें ये महिला वहाँ पे लोग अपने कानूनी विचार को रखते हैं। कोई ऐसी घटना हो जाती है कि गलत निर्णय ले लिया जाता है गांव में, लेकिन
1: बिल्कुल
0: ये सक्रिय महिला जेंडर रिसोर्स की जो महिलाएं हैं वो सही सही निर्णय देती है, चाहे दहेज प्रथा हो या किसी की नाबालिग बच्ची का शादी विवाह की मामला हो, दहेज प्रथा की बात मामला आ जाती है, तो इन बच्चियों को या ट्रैफिकिंग का मामला आ गया हो, तो ये ग्रुप सक्रिय रूप से काम करती हैं। और इन लोगों को न्यायिक जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इन लोगों को ट्रेंड किया गया है, अब पूरे कानून जानती है। और जब वहाँ पे सभा में कोई गलत निर्णय ले रही है और उस कानून के बारे में बताते हैं, तो उन लोग भी कहते हैं कि आप लोग आए तो हम लोग सही निर्णय लिए। ऐसे हमारे यहाँ पे कई ऐसे जो है कि हिंसाग्रस्त महिलाओं को बचाया गया। हमारा एक सेंटर भी है यहाँ पे, जिसमें कि अगर मान लीजिए उसको घर से निकाल दिया गया किसी महिला को, तो हम लोग बेड, बिस्तरा, खाना पीना सब यहीं पर रख करके जब तक माहौल सही नहीं हो जाती है तब तक हम लोग रखते हैं।
1: आपने अपनी बातों में काफी विस्तार से जितनी भी बातों को हमारे सामने रखा, जैसे आपने बताया कि मैया सम्मान योजना के बारे में, उससे भी आर्थिक रूप से जितनी भी महिलाएं हैं या बच्चियां कहें जो इसकी लाभुक हैं, उन्हें आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिल रही है, साथ ही साथ वो स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। एक बात आपकी और भी बहुत अच्छी लगी जो आपने मनरेगा के बारे में बताया। मनरेगा के तहत बहुत सारे रास्ते हैं जो ग्रामवासियों के समक्ष खुलते हैं, उन्हें स्वरोजगार का मौका भी मिलता है और अपने पैर पे वो खड़े होते हैं। आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी बात है कि वो उस रूप से सबल होते हैं। और अभी अभी जो आपने बातें बताई कि SHG ग्रुप से जुड़कर बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं और अपने घर की चार दीवारी से वो बाहर निकलकर कुछ नया करने का प्रयास कर रही हैं और इसमें भी प्रखंड स्तर पर उनको सहयोग किया जाता है। सर, मैं समझती हूँ कि इन बातों को सुनकर विशेष तौर से जो हमारी महिला बहनें हैं वो जरूर इस ओर उनका रुझान बढ़ेगा और वो भी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि और मांझी प्रखंड में आरा केरम जैसे गांवों को देखने का मौका मुझे भी मिला और एक मॉडल गांव के रूप में वो हमारे सामने है आज। और मांझी प्रखंड में ऐसे कौन से गांव हैं जो मॉडल गांव

0: बनकर तैयार है और भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
1: जी, जैसा कि आपने आरा केरम के नाम लिया, बेशक आरा केरम काफ़ी अच्छे पहल में सामाजिक सहयोग प्रदान करते हुए मॉडल ग्राम की ओर अग्रसर किया है। आरा केरम के जो पंचायत के विंग है, पंचायत की मशीनरी है, वहाँ पे सभी लोगों की एकजुटता, उसकी कोऑर्डिनेशन, उसकी सहभागिता उन सभी सब्जेक्टों पर रहा। वहाँ की जो भी बुनियादी चीज़ें थी, उस सभी बुनियादों को ध्यान में रख करके वहाँ पे काम किया जा रहा है। मनरेगा के तहत में वहाँ पे एक अचीवमेंट का काम किया गया। वहाँ की नाला जो बहती थी उसको जो है कि लूज बोल्डर से बांध दिया गया। पानी का संवर्धन करना है, पानी को रोके रहना है, उसका काम अच्छे से हुई। वहाँ पे एक और बड़ी बात है कि वहाँ पे समाज के लोग और वहाँ के पूरे नागरिक मिल करके नशाबंदी के विरोध में आगे बढ़े। उसी तरह से वहाँ पे एक रक्षाबंधन के कार्यक्रम होती है जो पेड़ों को बचाने के लिए है। वन संरक्षण बहुत जरूरी है आज के, और ये चीज़ वहाँ आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार से उन्हीं से प्रेरित होकर के, हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, वहाँ पे एक शिक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है। तो अक्सर ये माना जाता है कि सरकारी विद्यालय में आमने सामने के जो बच्चे हैं उसी की नामांकन होगी, लेकिन वहाँ एक सरकारी विद्यालय ऐसा है जिसमें नामांकित करने के लिए बच्चे दूर दूर से दूसरे ब्लॉक से भी आते हैं। तो सवाल उठते हैं कि दूसरे ब्लॉक वाले आते हैं तो आवासन कैसे होगी? वहाँ के पंचायत विंग ने मिल करके वहाँ के आवासीय व्यवस्था कर दिया गया है। और ये मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मैंने देखा कि एक प्राइवेट स्कूल की जो शैली होती है उस आधार पर जो है कि काफ़ी चीज़ें सुधार किया गया और एक मॉडर्न प्रस्तुत किया गया है। वहाँ के शिक्षक भी काफ़ी तैयार रहते हैं इस चीज़ों में। तो इन सभी वहाँ के मॉडर्न गांव के जो उदाहरण आ रही है उसी को ध्यान में रख करके एक गगारी भी उस रास्ते में अग्रसर हैं कि हम भी जो है कि उस आधार पर मॉडर्न गांव की जो जो बुनियादी चीजें हैं उसको उतार सकें। तो काफ़ी हद तक और गगारी पंचायत के जो सड़कें हैं उसको दुरुस्त करा दिया गया है और मनरेगा की योजनाएं से आच्छादित किया जा रहा है और आवास के लिए जो भी हैं वो सारी चीज़ें दी जाएगी। जहाँ तक महिला सशक्तिकरण से कि वहाँ की महिलाएं काफ़ी एक्टिव हो चुकी है भी, और वो भी जो है कि जितने भी उनको सपोर्टिव राशि दी जाती है महिला समूह को, उस सपोर्टिव राशि से वो अपने व्यवसाय की और जुड़ रहे हैं। और स्कूल की व्यवस्था हो या आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो, आज हमारे SHG ग्रुप के दीदी मिल करके और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिल करके पोषण के साथ साथ में पढ़ाई में जोर लगा रही है और एक पोषण वाटिका भी तैयार कर रही है वहाँ पे। तो पोषण वाटिका इतनी जरूरी है कि बच्चे जो है कुपोषित ना हो, और प्रचार प्रसार भी होता है कि एक जब कोई माता बनने के लिए तैयार होती है तो उनको क्या क्या चीज़ें सेवन होती है, ये चीज़ें वहाँ पे पुरजोर प्रचार प्रसार हो रहा है। तो ये हमारे नज़र में और हम लोग की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल रहा है उन लोगों के। मुखिया जी वहाँ के काफ़ी तैयार रहते हैं और आए दिन जो है कि चाहे जहाँ से भी लाभ मिल सके तो उस योजना के हो सके। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबके बारे में जानें और उसको लाभ लेने का प्रयास करेंगे।
0: अगर हम योजनाओं के प्रति थोड़े से जागरूक हो जाएं और इसको जानने का प्रयास करें तो हम इससे जुड़कर अपने आप को एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखा जाता है जब युवाओं के पास रोजगार नहीं होता है तो वो मुख्य धारा से भटक जाते हैं, गाँव से अन्यत्र उनका पलायन हो जाता है, कहीं और वो रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। तो ऐसे युवाओं से, ऐसे बेरोजगारी का मार झेल रहे बच्चों से आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी ओर से?
1: देखिए, मेरा सभी वैसे युवा जो बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं या भटक गए हैं, मेरा उनसे अपील रहेगा, उनसे आग्रह रहेगा कि आप संयम बरते और आप अपने मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कहीं ना जाए, सीधा पंचायत की ओर अग्रसर हो, पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत के जो विंग है, मुखिया है, पंचायत सचिव है, या तो सीधे ब्लॉक को जुड़े और सरकारी योजनाओं के बारे में जाने। जैसा कि मैंने बताया कि रोजगार सृजन योजना है, उस योजना का लाभ लेने के लिए आप जानकारी प्राप्त करें। निसंदेह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हर एक नागरिक के पास दो हाथ है, तो उस दो हाथ में कुदरत ने, भगवान ने हुनर दिया है। बस उस हुनर को पहचानने की जरूरत है। ये नहीं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। देश में हर एक प्रकार के काम के लिए, सबका देश के लिए, देश के विकास में योगदान होता है। चाहे घास काटने का हो, या रोड में गिट्टी बिछाने का हो, या इंजीनियर बनने का हो, या कोई श्रमिक का काम करने में हो, या कलेक्टर हो, या कोई सरकारी सेवा में हो, सेना में। सबकी अपनी अपनी हुनर है। आपका उस हुनर को पहचानना है, तराशना है और डटे रहना है। आप निसंदेह हैं, आप कहीं नहीं भटकेंगे। मनरेगा में जुड़ने के लिए आपको रोजगार सीधी तौर पर आपके बुनियादी जो जरूरत है वो मनरेगा देने के लिए तैयार है। मैं आपसे पुनः अपील करूंगा कि आप पंचायत को संपर्क करें और अपने आप में विश्वास रखें और अपने हुनर को पहचानें और उसको तराशने के लिए आगे बढ़ें।
0: सर, अंत में एक सवाल और करना चाहूंगी कि एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते आपके प्रखंड में, मैं कहूंगी कि जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, जैसे मुखिया है, ग्राम पंचायत सेवक हैं, इन सब का सहयोग आपको कैसा मिल रहा है और ग्रामवासी कैसे सहयोग कर रहे हैं इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए?
1: निसंदेह हमारा 18 पंचायत है अभी तक जो मेरा कार्यकाल रहा है। मैं एक ही चीज समझा हूँ, मैं खुद सहज इंसान हूँ और सहजता जो है कि कोई भी काम में कठिनाई लाने नहीं देती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो सहजता जो है कि हम जिनसे काम की अपेक्षा करते हैं, मैं खुद सहज हूँ, तो हमें भी वहाँ पंचायत के प्रतिनिधियों से, मुखिया जी से, पंचायत सचिव से सहजता पूर्वक काम में सपोर्ट मिलता है। और एक माहौल मैं तैयार करने का प्रयास करता हूँ कि एक जोश के साथ में खुशी खुशी कोई भी कठिन काम हो, या कोई भी अभियान हो, या कोई भी योजना का टारगेट हो, हम लोग निसंदेह पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: सर, आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और विकास की योजनाओं को तराशने का काम एक तरह से देखा जाए तो एक अभिभावक के रूप में आप इसे सिंचित कर रहे हैं और लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। जब फुर्सत के चंद लम्हे आपको मिलते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है, तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को सहज बनाने के लिए क्या करना ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मन की शांति की ही बात कहें तो इसमें मैं बेशक हूँ कि जब भी इस प्रकार की होती है कि मेरी जो दिनचर्या है काम करने की, काम करते वक्त ही लोगों में तनाव आती है। मैं हर काम को बिना तनाव का करता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले, जिसमें चर्चा हुई ग्रामीण विकास का उद्देश्य। साथ ही भेंटवार्ता थी प्रखंड का विकास आज की आवश्यकता। भेंटवार्ताकार थे प्रखंड विकास पदाधिकारी उर्मांझी श्री कामेश्वर बेदिया। इनसे बातचीत कर रही थी सिंधु मिश्रा। प्रस्तुति एवं संयोजन था प्रभु शरण का। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और 100.5 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का। 5:02 पर युवाओं से संबंधित कार्यक्रम युववाणी, जिसमें कंपेयरिंग करेंगी मारिया और अंकिता, जबकि प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोग, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:30 पर, जिस पर चर्चा होगी वर्षा जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम। प्रस्तुति होगी प्रभु

6 बजे सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार और 6:02 का वक्त होगा खेती बाड़ी का। सूत्रधार होंगे योगेश प्रजापति और पूनम पुष्पा मिंज, जबकि प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:30 पर सुनिए हमारी दुनिया, जिसमें चर्चा होगी पर्यटन से रोजगार। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7 बजे से और 7:11 पर जिले में आजकल कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा का वक्त होगा 7:15 पर। आज यह उराव भाषा में प्रसारित की जाएगी। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

8 बजे का वक्त होगा फिल्मी संगीत और संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का सुर्खियों में 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे इवनिंग न्यूज और 9:15 पर उर्दू में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

पब्लिक स्पीच 9:30 पर सुनहरी यादें आप 10 बजे सुनेंगे। 10:30 का वक्त होगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज के कलाकार होंगे सियाराम तिवारी। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

ये थे सांध्यकालीन प्रसारण में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम सांझ सरगम बस कुछ ही देर में।

श्रोताओ नमस्कार, मैं मेघना आपके साथ आकाशवाणी रांची से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम का पहला नगमा किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मेरे जीवन साथी से। इस गीत के गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आईडी बर्मन।

नदीम श्रवण के संगीत में कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म फूल और कांटे से। इस गीत को अपनी मनमोहक आवाजें दी हैं अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल।
2: संदेश के बाद कार्यक्रम सांझ सरगम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला नगमा, आशा भोसले की आवाज में फिल्म दी ग्रेट गैम्बलर से। इस गीत के संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। इस गीत के गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा मुकेश की आवाज में फिल्म कभी कभी से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है खयाम ने और बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज उपाध्यक्ष डीबी सुंदरारामम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर टाटा स्टील के रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव अरविंद कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने डिप्लोमा इन एडुकेशन एंड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के लिए चयन साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य में पहली बार एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड और ग्राउंड क्रू जैसे रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की शुरुआत अगले महीने से होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में आज भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो द्वारा मुख्यमंत्री के पुतला दहन की चेतावनी के बाद ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क जाम कर विरोध में उतर आए हैं। खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण और गश्त को मजबूत करने के लिए पुलिस बेड़े में 14 नए चारपहिया वाहन शामिल किए गए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग तेज होगी और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत तरहसी थाना क्षेत्र के तिरौंधा गांव में छापेमारी कर एक किराना दुकान से 490 ग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में दुकान संचालक अंकित कुमार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने आम लोगों से ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने और तेज जलधारा से दूर रहने की अपील की है। मछुआरों को भी नदी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ छवि। श्रोताओं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश के गाए कुछ गीत। संध्या के 5:30 से संध्या के 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा के अलावा आप उड़ाव लोकगीत सुनेंगे और साथ ही उड़िया लोकगीत का भी आनंद लेंगे। संध्या के 6 आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। 6:02 से 6:30 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा, जिसमें जानकारी की बातों के अलावा चर्चा की जाएगी और हेरो दुरंग आप सुनेंगे माटा जामुदा और साथियों के स्वर में। साथ ही आप भेंट वार्ता सुनेंगे आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण के संबंध में। भेंट वार्ताकार हैं यशवंती गुइया और उनसे बातें कर रहे हैं महेंद्र गुइया। युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या के 6:30 पर।

संध्या के 6:55 पर आपको हम लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। संध्या के 7:15 से रात्रि के 8 तक हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं की पसंद पर आधारित कार्यक्रम है। रात्रि के 8 से 8:45 तक आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 8:45 से 9 तक आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 से 9:15 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। 9:15 से रात्रि के 10 तक आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 से 11 तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी।

श्रोताओं, आप आज अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में, और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश के गाए कुछ गीत।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक मुकेश के गाए कुछ गीत कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो पेश है सबसे पहले, फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत मुकेश की आवाज़ है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश के गाए कुछ गीत। अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गीत। गुलजार के बोल हैं, संगीत है सलील चौधरी का।
1: मैंने

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कभी कभी फिल्म का गीत। शाहिद के बोल थे और संगीत था खयाम का। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म हम हिंदुस्तानी का ये गीत। मुकेश और साथियों की आवाज़ें हैं और प्रेम धवन के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का। श्रोताओं, आज गुलदस्ता कार्यक्रम में आपको एक ही गायक मुकेश के गाए कुछ गीत हम सुनवा रहे हैं।

0: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्र

0: संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800354040 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिंपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायक मुकेश के गाए कुछ गीत। तो अब इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यही संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती गृहस्थी। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानकारी लेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना विषय पर। मनोरंजन करेंगे उरांव लोकगीत से और भेंट वार्ता के माध्यम से भी हम जानकारी लेंगे एक किसान मित्र से, और अंत में हम पुनः मनोरंजन करेंगे उड़िया लोकगीत से। श्रोताओं, देश की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है। भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की परिकल्पना की गई है, संविधान के अनुच्छेद 38 सबक्लोज 2 में, जिसमें कहा गया है किसी भी क्षेत्र में हो, विभिन्न वर्गों में हो, विभिन्न समुदायों में

कोई भी काम करते हो, उनमें प्रतिष्ठा में, अवसरों में उन्हें असमानता का सामना ना करना पड़े, इसके लिए नीति बनाने की जरूरत है। और खास करके 46 में कहा गया है, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अर्थ से संबंधित और शैक्षणिक से संबंधित एक विशेष सावधानी के साथ उसके लिए नीतियां बनाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के सामाजिक शोषण का सामना करना ना पड़े इन समुदायों के। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के संदर्भ में केंद्र सरकार ने 2009 और 10 को एक महत्वपूर्ण योजना, जहां 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियां को हो, उन क्षेत्रों के सर्वांगीण और एकीकृत विकास के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को लागू किया है। और यह योजना 2011 की जनगणना पर आधारित है। और इस योजना के तहत प्रत्येक गांव के सर्वांगीण विकास के लिए राशि केंद्रीय सहायता देने का प्रावधान है, जिसमें 21 लाख रुपए प्रत्येक गांव को दिया जाना है, जिसमें से प्रति गांव 20 लाख रुपए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए और 1 लाख रुपए प्रशासनिक देखभाल के लिए, यानी उनके सुख सुविधा के लिए खर्च किए जाना का प्रावधान है, प्रशासनिक व्यय पर आधारित होगी। प्रथम चरण में श्रोताओं, 5 गांव का या 5 राज्यों का चयन किया गया था। जिसमें तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, कुल 1000 गांव का चयन किया गया था, जिसमें असम में 100 गांव चयनित गांव थे, बिहार में 225, हिमाचल प्रदेश में 225, राजस्थान में 225 और तमिलनाडु में भी 225 गांव का चयन किया गया है। और प्रत्येक गांव के हिसाब से 20 लाख रुपए का प्रावधान है। दूसरे चरण में जब 2014 और 2015 में केंद्र सरकार ने पुनः कई गांवों को इसमें शामिल किया गया, ताकि सर्वांगीण विकास हो गांवों का, जिसमें असम में 75 गांव, उत्तर प्रदेश में 260 गांव, मध्य प्रदेश में 327 गांव, कर्नाटक में 201 गांव, पंजाब में 162 गांव, उड़ीसा में 175 गांव, झारखंड में 100 गांव, छत्तीसगढ़ में 175 गांव, हरियाणा में 12 गांव, आंध्र प्रदेश में 7 और तेलंगाना में 6 गांव का चयन किया गया। इसके पश्चात 2018 और 19 में पुनः गांव की संख्या और बढ़ गई, जिसमें आंध्र प्रदेश जुड़े, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर जैसे गांव की इसके दायरे में आ गए। और इस चयनित गांव का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ मापदंड किए दिए हैं कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत किन किन योजनाओं को चयनित कर उनका क्रियान्वयन करना है, कार्य क्षेत्र क्या क्या होंगे। कार्य क्षेत्र के रूप में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत पेयजल और स्वच्छता

से संबंधित योजनाओं का चयन किया जाना है, उन्हें उसके ऊपर राशि खर्च की जानी है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, अनिवार्य शिक्षा हर नागरिक की अधिकार है, हर नागरिक को मिलना चाहिए। इसके लिए शिक्षा पर भी इस राशि का खर्च करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य और पोषण पर भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा हर नागरिकों को मिले, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही साथ इस प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत भी सामाजिक सुरक्षा पर भी खर्च करने का प्रावधान है। इसके साथ साथ एकीकृत सड़कों और आवासों का निर्माण किया जाना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य आवास से संबंधित सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस पर खर्च किया जा सकता है ग्राम सभा के माध्यम से। कृषि पद्धति के विकास के लिए इस राशि का हम खर्च कर सकते हैं। वर्तमान समय में मशीनीकरण यानी डिजिटलाइजेशन है, उस पर भी इस राशि का खर्च करने का प्रावधान है। आजीविका एवं कौशल विकास, जो देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रमुख आधार है, हमारा कौशल विकास, इन पर भी खर्च करने का प्रावधान है। श्रोताओं, इस प्रकार 21 लाख में से 20 लाख रुपए कार्यशील पूंजी के रूप में इन योजनाओं का चयन कर ग्राम सभा के माध्यम से हो या पंचायत के माध्यम से हो, इनका सहायता लेकर के योजनाओं को बनाने की ज़रूरत है। आज के समय में जो भी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इस योजना से हम अपनी उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, बशर्ते कि हम ग्राम सभा के माध्यम से ऐसी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएँ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं गांव के विकास के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की परिकल्पना है आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास। इसको पूरा करने में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना काफ़ी सार्थक साबित हो सकती है। इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला परिषद जैसे संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अनुशंसा उसके माध्यम से इन सबों को, इनसे संबंधित योजनाओं को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि हमें वित्तीय राशि मिल सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में हम आम नागरिक, ग्राम सभा के सदस्य, बुद्धिजीवी, समाज से भी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में विकास करें। सबका साथ सबका विकास कैसे हो, इस पर चिंतन मनन की ज़रूरत है। पैसों की कमी नहीं है, बशर्ते कि हम सही रूप से उनका खर्च करें, सही रूप से योजनाओं का चयन करें। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे उरांव लोकगीत से नारायण भगत एवं साथियों के स्वर में। इस लोकगीत के बाद आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आइए हम भेंटवार्ता के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत में कृषि की क्या भूमिका है। इस पर एक महिला किसान से सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
2: श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र के उन्नति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार होता है और भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण आबादी 70 से 75% रहती है, वहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और भी जरूरी है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मिश्रित खेती के संबंध में एक महिला किसान से बातें करते हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार।
3: जोहार, मैं रिंकी बांद्रा।
2: तो वर्तमान समय में आप मिश्रित खेती के संबंध में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए, ये आज जरूरी क्यों है?
3: देखने से आज हम लोगों का जनसंख्या बहुत बढ़ गया है और खेत जमीन भी हम लोग बांट बांट के छोटा होते जा रहा है। गांव घर में खेत जमीन सब भी छोटा होते जा रहा है, तो उससे हम लोग को भरपूर फसल अब नहीं मिलता है। जो खेती होता है वो भी हमारे लिए अब कम पड़ने लगा है, तो जगह कम और आवश्यकता अधिक हो गया है। इसीलिए हम लोग को मिश्रित खेती करना चाहिए, जिससे हम लोग को आमदनी हमेशा आता रहे।
2: अच्छा, ये बताइए कि ये मिश्रित खेती क्या है, एक्चुअल में किस प्रकार खेती करते हैं, मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है?
3: मिश्रित खेती का मतलब है कि एक समय में बहुत सारा फसल लेना और बहुत तरह से खेती से आमदनी प्राप्त करना। मतलब जैसे हम लोग खेती, मतलब खेत में जो खेती कर रहे हैं, धान रुपाई, दाल या दूसरा कुछ भी, तो उसके साथ साथ में हम लोग पशुपालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, मुर्गी पाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मिश्रित पालन।
2: अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है आज के समय में? ये धान, चावल, साग सब्जी के अलावा मछली, बकरी, सुअर या दूध उत्पादन की जरूरत क्यों हो रही है?
3: क्योंकि ये हमारे जीवन में रोज का जरूरत है और ये हम लोग को एक तरह से हमारे आय का स्रोत को बनाए रखता है। हम खेत से, मतलब खेती से बारिश कम हो गया या कुछ हुआ तो इस तरह का जो जोखिम होता है उससे हम लोग बचे रह सकते हैं और हमारा आय साल भर कुछ ना कुछ रूप में साल भर हमारा आय आता रहे, इसीलिए मिश्रित खेती का जरूरत होता है।
2: तो इस मिश्रित खेती के अंतर्गत क्या क्या हम कर सकते हैं एक साथ?
3: मिश्रित खेती में जैसे आप बगान लगा लिए, बगान लगाने के साथ आपको गाय और बकरी भी पालना चाहिए। उससे क्या होता है, जो खरपतवार निकलता है और जो खेत का जो बेकार

0: क्या होगा अगर तालाब में आप गोबर डालते हैं तो उससे मछलियों को अच्छा खाद मिलता है और मछलियां तेजी से बड़ी होती है, तो इससे में आपको मछली पालन में अच्छा प्रॉफिट होता है।
1: अच्छा, इसमें और जानकारी दीजिए, क्या इससे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है या जो बाहर जो जा रहे हैं लोग, क्या इस पर हम मिश्रित खेती से क्या उनको मजदूरी के रूप में हम या मजदूर उन्हें बना सकते हैं या अपना मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? क्योंकि आज वर्तमान समय में देखा गया है कि बहुत सारे किसान गांव छोड़ करके गुजरात चेन्नई या इस प्रकार जा रहे हैं, क्या मिश्रित खेती करने से इस पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है, मजदूर हमें आराम से मिल सकता है?
0: मिश्रित खेती में आपको लेबर ज़्यादा लगता है और हाँ, इससे आप पलायन रोक सकते हैं, क्योंकि जब मजदूर के पास हर समय पैसा आएगा तो वो पलायन मतलब बाहर क्यों जाएगा, पैसा कमाने बाहर क्यों जाएगा? जैसे जिस समय खेती का समय नहीं होता है या बारिश कम होने से खेती अगर कम भी हुआ तो किसान जो है गाय से दूध निकाल सकता है, दूध बेच सकता है, मांस बेच सकता है, फिर क्या बोलते हैं मुर्गियों से अंडा प्राप्त कर सकता है, उसको बेचकर पैसा कमा सकता है, फिर मछली पालन कर सकता है। तो एक किसान के पास साल भर काम होता है।
1: अच्छा, वृक्षारोपण या फलदार वृक्षों की भी इसमें मिश्रित खेती के अंतर्गत आता है?
0: हाँ, फलदार वृक्ष का भी मिश्रित खेती में रहता है, लेकिन फलदार का वृक्ष का भी जो है फल का समय अलग रहता है और हर एक फल का अलग अलग समय रहता है। तो इसमें क्या होता है, गर्मी के समय जैसे आम निकल गया, फिर कटहल निकल गया, उसके बाद बरसात में क्या करेंगे, बरसात में कौन सा फल खाएंगे, और बरसात के समय में खेत में काम नहीं होता है तब वो मछली पालन पर ध्यान दे सकते हैं, मछली उस समय निकलता है।
1: अच्छा, पत्ता किया मुर्गी उनको भी बेच करके हम परिवार को पाल सकते हैं। अर्थात यह क्या इसमें बहुत ज्यादा जोखिम नहीं है इसमें?
0: ये मिश्रित खेती हमारे आर्थिक जोखिम को कम करता है।
1: अच्छा, आर्थिक जोखिम को कम करता है। वर्तमान समय में जो हम एक फसल लगाते हैं और एक समय में एक ही फसल लगाते हैं तो दूसरा समय में या दूसरा दिन हम नहीं बेच पाते हैं, तो क्या मिश्रित खेती करने से प्रतिदिन हम बेच पाएंगे फसलों को या अपने उत्पादों को?
0: बिल्कुल, जैसे जब आप मकई का समय आया आप मकई बेच लेंगे, और जिस समय भिंडी का समय आएगा भिंडी बेच सकेंगे, नेनुआ का समय में नेनुआ बेच सकेंगे, और आलू के समय में आलू बेच पाएंगे। सब तो एक ही सीजन में नहीं आएगा ना, तो सबका अलग अलग महीना होगा, अलग अलग समय रहेगा, तो वो धीरे धीरे करके आपको आर्थिक सहायता देता रहेगा।
1: तो इस प्रकार की जो मिश्रित खेती हम यदि करते हैं तो क्या जो हमारे जो मौसम की जो प्रकोप है यानी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? क्योंकि गर्मी के मौसम में खास करके देखा जाता है मार्च के बाद में लोग खेती करना बंद कर देते हैं क्योंकि उस समय इतनी तेज धूप रहती है, तो इस मिश्रित खेती से हमको उस समय कैसे फायदा होगा?
0: देखिए, मार्च में तो बारिश नहीं होता है, उस समय तो खेत खलिहान वाला काम खत्म होता है। खेत खलिहान वाला जब काम खत्म होता है तो आपके पास गाय है, बकरी है, मुर्गियां है, तालाब है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं उस समय, तो वहां से आप का इनकम होगा।
1: अच्छा, कहने का मतलब है कि यदि साग सब्जी नहीं हो रहा हो तो मेरे यहाँ जो पशु हैं या मुर्गी है या बत्तख है उससे भी हम आय प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से संपन्न बना सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, इसके साथ साथ और जानकारी दीजिए कि इसके अंतर्गत किस प्रकार की मिश्रित खेती कर सकते हैं हम, जैसे धान के साथ या चना या इस प्रकार का यदि हम सोचते हैं तो क्या उसमें संभव है?

श्रोताओं, इस भेंटवार्ता के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कोर्ट के कदम का स्वागत करते हुए फॉरेंसिक जांच की मांग को सही ठहराया। वहीं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा छात्रों के कंधे पर सवार होकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा में 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़े मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थियों ने पहली परीक्षा के आधार पर परिणाम की मांग की, जबकि जेएसएससी में ने जांच में संदिग्ध गतिविधि और अनधिकृत एक्सेस के पुख्ता संकेत मिलने का हवाला दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 25 अगस्त से 4 सितंबर तक होम टू रोल वेरिफिकेशन अभियान चलेगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक परिवार एक मतदान केंद्र व्यवस्था लागू करना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में रामगढ़ से जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा की शुरुआत की गई, जहां अभ्यर्थियों ने लुकैयाटार में दिशुम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस बीच नेमरा के ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क जाम कर विरोध में उतर आए हैं। पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय परिसर में जेएसएलपीएस सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित राखी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। इस वर्ष जिले के लेस्लीगंज पड़वा और नाबाबाजार प्रखंडों में महिलाओं द्वारा 40,000 राखियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सावन की अंतिम सोमवारी पर सरायकेला जिला शिवभक्ति में सराबोर रहा। कुदराशाही के प्रसिद्ध बाबा बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, माजना घाट के पंचमुखी शिव मंदिर, चांडिल के जायदा शिव मंदिर और खरसावा के ऐतिहासिक रामगढ़ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा।

आकाशवाणी रिया चाय भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज सर्वन आई मतना ना आई पेंग चे बजाय ने ते 2 मिनट हो बसकाया ना कार्यक्रम हो आकड़ा आई मिच बेन लगे अलिंग बेटा उजू के महेंद्र अगुई है सबिन को अलिंग पे ते जोहार जाओ दिन लेका गे जानकारी रिया जगर हेरो परोब रिया दुरंग बेपटा जगर ओंडो आंधी रिया दुरंग इमान इमान कोलिंग सगमा गुते डे इना को मियन मियत तिलिंग आयु मिचिबिना आयुम लगिन एफएम रेडियो जपारे तयन बेन एला एनरदो सभी को ते आयर जानकारी रिया जगर से अटकर जगर लिंग आयु मिचिबिना लीची ओंडो अनार दारु को रुआ के ते लापा इडी दिया लीची ओंडो अनार दारु बरी जकन जो ओ दारुतन निना एसु बुगिन गुनोंगन तेया जोत दारुतन निया जो मीट किलो रे 112 टका 1200 जकेन निया गुनों नाम इना मेनते लीची ओंडो अनार दारु रुवायतिया एसु रिंगा गरोजो मेना आबु हातु दिसुम पेरे का नाला नौकरी तेन को दो पैसा रिया एसु गरोजो मेना हसु दुकु तेन रियो ची जान जितना इंकन जिनिस को किरिंगितिया पैसा टका एते नंगा पूरे दयो इना मेनते आते नेलकन गुनुंगन दारु चीनकन जो तिया को रे अब लीची दारु नैन अनार ऐसु पूरे गुनुंगन जो दारु तेन निया को ना बोले लेतन गया बाजार को रे लीची अंडो नैन अबो अनार निया ऐसु गुनुंगन जिनिस तेने अंडो निया ते अबु ए हसु केन समय रे जो मेरे निया को ते मायम को ऐसवंजा पेरे हो रहा इना मेंते आते अबु हातु दिसुम रे ओकों तारे वाजपा अबु इंकन टाइट को मिना इन्द्र दो इंकन तारे निया को रुवायतिया ऐसुरिना दरकर जो में लगडो हुबावा अंडो निया बो अकरिंग के ते पैसा टका को भू अर्जाव दाये मरे इन्द्र दो हातु दिसुम पे ते अलिंग इनागिलिंग असरा वाचे जितना भी मीना अबू है हगामिसी को अबू नेलेकन लीची ओंडो अनार दारु बो रुआयचा ना दो नैन समय रेगे रुआयतिया अबु ना कलमियो मीना कलमितिया को ना काकुवितेने बाजार करे एंदो इना को बो किरिंगे का ना दो अबु इनका तरियो नैन समय रे रुआय रे नैन दारु को सबिन जीड हो गया इना मेनते आते मर पूरे ते पूरे अबू कम से कम इरलिया ते गिलिया लिका दारु निया को बू रुआ जम रदो ऐसो पूरे निया ते लापाबू एडी दिए इंगे जानकारी रिया जगर चे अटकर जगर दो नैन मोलरे के चबाव तना ना बन अयुमतन ते के ना अटकर जगर चे जानकारी रिया इन चनम एला उन्डो आयर पाजुका अयुमिची बिनालिंग हेरो परोब्रिया दूरंग।

0: ᱞᱮ ᱮᱢᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱢᱟᱨ ᱟᱵᱮᱱ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
3: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1499 या 1800-345-4060 पर।
2: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आयम केडा बेप्टा जगर निन बेप्टा जगर चनम एला कार्यक्रम रेया तुंडुरे मिजन आंदे दुरेलिंग आयम चबिना।

निया आंधे दुरंगलो तगे तिशिंगे हो आकड़ा काजक्रम निंतारगे चबाव तना सेनेडी तिनलिंग सेनो सेनो ते हो आकड़ा आयुम तेन सबिन हगामिसे को उंडो बुंदु को तुंडुरे उंडो मिसे अलिंग महेंद्र गुई पेते सबिन को सिबिल जोहार।

श्रोताओं आप सुन रहे थे कार्यक्रम हो अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आपको हम सुनवाते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को छवि का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। युवा दोस्तों, बहुत सारी बातें चल रहे हैं हमारे देश में, हमारे युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने बहुत नाम कमाए हैं। संघर्ष का जीवन है हमारा और यूं ही संघर्ष करते हम चले जाते हैं। युवा दोस्तों, आज के दौर में हमारे युवा लेखक हिंदी साहित्य को नई सोच, नए विषय और आधुनिक दृष्टि दे रहे हैं। ये लेखक आम जीवन, सामाजिक बदलाव, तकनीकी और आम आदमी की शिक्षा को अपनी रचनाओं का आधार बनाते हैं। आज के युवा लेखक नए विषयों को लेते हैं जिसमें डिजिटल युग, अकेलापन और आधुनिक रिश्ते हैं। इनकी भाषा काफ़ी सरल है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने से लोगों तक सीधी पहुंचती है ये बातें। सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादातर रचनाकार कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाकर कविता और लेखन का प्रसारण कर रहे हैं। इसके अलावा बदलाव में सोच आया है। सामाजिक मुद्दे और समानता पर खुलकर आजकल बातें हो रही हैं, वो लिख रहे हैं। आज के हमारे युवा और कवि लेखकों

0: मेहर कुमार प्रियांशु, जो सामाजिक मुद्दे और नई ऊर्जा वाली कविताओं के लिए जाने जाते हैं। निरुपमा अनुभव, महिलाओं के अनुभव और सामाजिक संघर्ष पर गहरी रचनाएं लिखती हैं। आनंद कुमार ऐसे युवा हैं जो कविता मंचन और सामाजिक मीडिया के लिए काव्य पत्र बना रहे हैं। तो युवा दोस्तों, जीवन में पढ़ना लिखना और नई दिशा दिखाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हर युवा को नई दिशा मिल जाती है, जो सपने वो संजोते हैं और उन्हें पूरा कर लेते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं होती। तो चलिए कुछ लेखकों के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने अपने साहित्य से हिंदी को समृद्ध किया है। तो आज आपको सुनवाते हैं कालजयी, हमारे जो बहुत महान लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में बता रहे हैं विश्वजीत कुमार सत्पथी। तो चलिए उनसे ये वार्ता सुनते हैं।
1: संस्कृति के अमर गायक तथा छायावाद की वृहत चतुष्टयी के सशक्त स्तंभ कविवर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवीप्रसाद जी तंबाकू के व्यापारी थे। परिवार पर लक्ष्मी व सरस्वती का वरद हस्त था। बाल्यावस्था में ही माता पिता के असामयिक निधन व निकटस्थ परिजनों के काल कवलित हो जाने के कारण परिस्थितियों ने करवट ली। फलतः औपचारिक शिक्षा महज 8वीं तक ही हो पाई। घर पर रहकर ही बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन आदि का गहन स्वाध्याय व अनुशीलन किया। साहित्य सृजन की ओर इनकी स्वाभाविक अभिरुचि थी। व्यापार व परिवार के पालन पोषण के साथ साथ रचनाधर्मिता भी निर्बाध चलती रही। ये स्वभाव से अति सरल, सहज, दयालु व मृदुभाषी थे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं इंदु एवं हंस नामक मासिक पत्रों में प्रकाशित हुआ करती थीं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा तथा जागरण व इंदु नामक पत्रों की ये आर्थिक सहायता भी किया करते थे। कामायनी महाकाव्य पर 1200 रुपया का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा को दान में दे दिया। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी साहित्य में नाटक सम्राट, महान कवि, कहानीकार, निबंधकार आदि रूपों में आप बहुप्रतिष्ठित हैं। आपका साहित्य विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है, इसलिए आपको विश्व विभूति कहने में किंचित भी अतिरेक नहीं। नारी के प्रति पाश्चात्य भोगवादी दृष्टि से परे प्राच्य पूज्या दृष्टि को रेखांकित करती उनकी ये पंक्तियाँ बहुधा ही उद्धृत की जाती हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अस्तु, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। इस हेतु प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का आग्रह किया, जिससे वे सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य, जो पहली बार हंस के आत्मकथा विशेषांक में सन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अपने जीवन की व्यथा कथा को बयां करते हुए कहते हैं, यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब प्रस्तुत है इनके रचना संसार पर एक विहंगम दृष्टि। काव्य कुल 7, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। नाटक

कुल 13 हैं, जिनमें से प्रसिद्ध हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नाग यज्ञ, कामना और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास कुल 3, कंकाल, तितली व इरावती। कहानी, इनकी विविध कहानियों के कुल 5 संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। निबंध, निबंधकार के रूप में काव्य और कला के निबंध इनके स्थायी कीर्ति स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद की चर्चा हो और छायावाद अछूता रहे तो पूरी वार्ता ही अधूरी हो जाती है। हिंदी साहित्य में छायावाद और भारतीय राजनीतिक फलक पर महात्मा गांधी का आविर्भाव लगभग एक ही साथ हुआ। हिंदी का छायावाद या शेडोइज्म वस्तुतः अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म का ही पर्याय है। सन 1916 से 1936 तक लगभग 20 वर्षों का समय छायावाद युग कहलाता है। इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी कहा जाता है। यह एक आदर्शवादी काव्य धारा है जिसमें वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, प्रेम, सौंदर्य तथा स्वच्छंदतावाद की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, कोमलकांत पदावली, लाक्षणिकता, मानवीकरण तथा प्रतीकात्मकता इसके शिल्प पक्ष की विशिष्टताएं हैं। छायावाद की वृहत चतुष्टयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला शामिल हैं। कतिपय आलोचक प्रसाद जी को ही छायावाद का जनक मानते हैं, पर इस संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। प्रसाद कृत आंसू मानवीय विरह का एक प्रबंध काव्य है। इसमें स्मृतिजन्य मनोदशा एवं प्रियतम के अलौकिक रूप लावण्य का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रियतम के वियोग की पीड़ा विरह के समय आंसू बनकर वर्षा की भांति उमड़ पड़ती है। जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृति सी नभ में छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। लहर आत्मपरक प्रगीत मुक्तक है जिसमें कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। प्रकृति के रमणीक रूप को लेकर मधुर रूपकमय यह गीत द्रष्टव्य है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुर मुकुल नवल नव रस गागरी। प्रसाद की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम देखते ही बनता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। राष्ट्रभक्ति से लवरेज वीर रस का एक प्रख्यात प्रयाण गीत द्रष्टव्य है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रकृति के कोमल ही नहीं अपितु भयोत्पादक रूप को भी कवि ने बखूबी स्वर दिया है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काम के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। महाकाव्य कामायनी इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह छायावादी युग की प्रतिनिधि काव्य रचना है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक कुल 15 सर्गों में विभक्त इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। चित्त

0: स्थितियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है। कामायनी के लज्जा सर्ग का यह चित्रण अतीव रमणीय है। कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, गोधूली के धुमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए, माधव के सरस कुतूहल का आँखों में पानी भरे हुए, नीरव निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। प्रसाद जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित विशुद्ध हिंदी है। इनकी गद्य कृतियों में भी काव्यात्मकता का गहन पुट है, इसलिए भाषा क्लिष्ट होते हुए भी मधुर कोमल कांत व सरस है। प्रसाद जी के काव्यों में सभी रसों का समावेश है, पर वीर भयानक करुण व श्रृंगार इनके प्रिय रस रहे हैं। यद्यपि विविध छंदों में इन्होंने काव्य रचनाएं की, तथापि गीत इन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा प्रिय थे। अपनी रचनाओं को अलंकारों से सुसज्जित करने की उन्होंने कोई सायास चेष्टा नहीं की, पर वे स्वतः ही यथास्थान अंतर्गुम्फित होते चले गए। तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने गुरुतर उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए महज 48 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर सन 1937 को आपने अपनी यह ईह लीला समेट ली। यह हिंदी साहित्य जगत के लिए एक ध्रुव तारा का अवसान था। आप ही के शब्दों में एक विनम्र शोकांजलि। सुख आहत शांत उमंगे बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में।
1: तो युवा दोस्तों, आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में विश्वजीत कुमार सतपति से। तो चलिए एक प्यारा सा आपको गीत सुनवाते हैं, फिर उससे आपसे हम फिर और भी बातें करेंगे।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तो युवा दोस्तों, अभी हम फिल्मी गीत का आनंद ले रहे थे। हम कुछ जानकारी देते हैं आपको युवा दोस्तों। हमेशा कार्यक्रम में इस चीज की जानकारी आपको दी जाती है, मिशन वात्सल्य के बारे में। तो आपको हम बता दें कि मिशन वात्सल्य आखिर है क्या और इस योजना के तहत किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं वह दोस्तों, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता, यह प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे ज़िले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आपको हम बता दें कि यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है, जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में न चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, तो पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों, परिवार हर बच्चे का अधिकार है। तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे। इस

मस्त रहें, अच्छे से रहें और हिंदी साहित्य में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते रहें, समाज को नई दिशा प्रदान करने वाले बने, इसी इच्छा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपने युवा दोस्त छवि को अब इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको हम ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने एसीएफ और एफआरओ नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कैंपा शासी निकाय की उच्च स्तरीय बैठक, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के दिए कड़े निर्देश। मानव तस्करी एवं मानवाधिकार विषय पर रांची में राज्य स्तरीय सम्मेलन, न्यायपालिका पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में राज्य के तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, 3 कांस्य पदकों पर जमाया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने जेपीएससी सहित सभी पक्षों से जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 15 सितम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दे चुका है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का स्वागत करते हुए इसे अत्यंत गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता पर भी बल दिया है।
2: सुप्रीम कोर्ट इस बात पे भी चिंतित था कि जेपीएससी वो एजेंसी है जो सिविल जजेस की परीक्षा लेती है, यानी न्यायिक सेवा में भी पारदर्शिता है कि नहीं। उन्होंने नोटिस जारी किया है जेपीएससी को, जेएससी को, राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि न्यायालय से अंततः छात्रों को न्याय मिलेगा। गलत तरीके से जो लोग भी चुनाव हुए हैं वो बाहर होंगे और सीबीआई जांच का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है।
1: इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने जेपीएससी परीक्षा मामले पर कहा है कि भाजपा छात्रों के कंधे पर सवार होकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी, जबकि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पेपर लीक और रोजगार माफिया के खिलाफ थी।
3: राज्य सरकार के जो सीआईडी विभाग है उनका वर्क जो हो रहा है वो सराहनीय है। इसमें कहीं दो राय, हर दिन नई चीजें खुल के आ रही, सब मीडिया के पास साफ साफ, कोई हाइड एंड सीक नहीं। तो राज्य सरकार को कंटेस्ट करना चाहिए कि अब मिड में सारी चीज जब हो रही है तो एक नया एजेंसी को यहाँ आने की कोई जरूरत।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की है। गौरतलब है कि सीआईडी जांच के बाद सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द की हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में रामगढ़ से जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा की शुरुआत की गई, जहां अभ्यर्थियों ने लुकियाटार में दिशों गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि ये 24 जिलों की यात्रा भर्ती व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और पेपर लीक को रोकने तथा निष्पक्षता की गारंटी सुनिश्चित कराने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है।
4: गुरुजी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग 24 जिला का भ्रमण का शुरुआत कर रहे हैं, जो 24 जिला 24 संकल्प एक आवाज भर्ती व्यवस्था में सुधार की आवाज को बुलंद करेंगे और गांव से शहर तक इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। और जितने भी एग्जाम पर सरकार कार्रवाई की है 45

0: प्रतिपादित परीक्षाओं पर, चाहे वो माननीय हाईकोर्ट में यह मामला जाए, ये आदेश बरकरार रहना चाहिए।
1: इस बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो द्वारा मुख्यमंत्री के पुतला दहन की चेतावनी के बाद नेमरा के ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क जाम कर विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हेमंत सोरेन के ग्राम प्रधान यानी मांझी हड़ाम है और बिना उनकी अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव में घुसने या विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
2: देवेंद्र नाथ महतो जो हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के लिए खोज रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ आए हुए। हेमंत सोरेन का जो हम लोग का गांव का मझियाड़ा है, उसका पुतला दहन नहीं करने देंगे। अंदर घुसना है पहले तो हम लोग का गांव का मझियाड़ा जो रहते हैं जोक मांझी नायके भद्रा, उस सबसे पहले आपको लेना चाहिए आदेश, उसके बाद हम अपना गाँव में हम लोग घुसने देंगे।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा में 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़े मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रार्थियों ने पहली परीक्षा के आधार पर परिणाम की मांग की, जबकि जेएसएससी ने जांच में संदिग्ध गतिविधियों और अंधिकृत एक्सेस के पुख्ता संकेत मिलने का हवाला दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित कैंपा शासी निकाय की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रतिकारात्मक वन रोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत जारी वनीकरण योजनाओं की समीक्षा की और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मानव तस्करी व मानवाधिकार विषय पर रांची में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि पीड़ितों को तस्करों से बचाने के साथ साथ समाज में उनके सम्मानजनक पुनर्वास और दोबारा तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 4 सितंबर तक होम टू रोल वेरिफिकेशन अभियान चलेगा। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य एक परिवार एक मतदान केंद्र व्यवस्था लागू करना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। हजारीबाग में जनजातीय गौरव उत्सव में आई महिला उद्यमी एमएसएमई योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रही हैं। पहली बार स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने केंद्र सरकार के प्रयासों को सराहा। बिरसा मुंडा जनकल्याण प्रचार अभियान के प्रमुख राजमणि ने बताया कि सरकार महिलाओं की यात्रा और स्टॉल का खर्च लौटाती है, जिससे पूरा मुनाफा सीधे उन्हें मिलता है।
3: हमारा जो कार्यक्रम है जनजातीय गौरव उत्सव, वो एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से पीएमएस स्कीम होता है। जो महिलाएं उद्यमी है, स्टॉल लगाना चाहती है, वो 30,000-40,000 रुपए खर्च कर देती हैं, लेकिन कभी कभी मुनाफा नहीं होता, उनके लिए बड़ा अमाउंट होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा कि आप एक काम करें, आप स्टॉल का पैसा हमसे पूरे वापस ले जाए, मतलब अगर कहीं स्टॉल पे लगाती है तो 30,000 रुपए उनका पूर्ण रूप से वापस हो जाएगा। इस तरह से सोच से हमारी आज महिलाएं तरक्की कर रही है।
1: खूंटी जिले में अपराध नियंत्रण और गश्त को मजबूत करने के लिए पुलिस बेड़े में 14 नए चारपहिया वाहन शामिल किए गए हैं। एसपी ऋषभ गर्ग ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग तेज होगी और दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
4: झारखंड सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल करते हुए हम लोगों को 14 और वाहन दिए गए हैं, के माध्यम से हम लोग और अच्छे रूप से खूंटी में पेट्रोलिंग कर पाएंगे और थाना को अपने डेली कार्य निष्पादन में भी इससे सहूलियत, और अभी जल्द ही हम लोगों को 18 और बाइक्स मिलने वाली है, जिससे कि हम लोग लगातार नियमित रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी पेट्रोलिंग कर सकेंगे और आम लोगों तक पुलिस की पहुँच को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकेंगे।
1: सावन की अंतिम सोमवारी पर आज पूरा झारखंड शिवभक्ति में सराबोर रहा और राज्य के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विश्व प्रसिद्ध देवघर के बाबा धाम में अंतिम समाचार मिलने तक करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके अलावा दुमका के बासुकीनाथ, खूंटी के बाबा आमरेश्वर धाम और सरायकेला के बुधेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न जिलों में लाखों भक्तों ने जलार्पण किया। बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में झारखंड के तीरंदाजों ने

शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए राज्य के खिलाड़ियों ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर खुशी जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट ने एसीएफ और एफआरओ नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कैंपा शासी निकाय की उच्च स्तरीय बैठक, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के कड़े निर्देश दिए। मानव तस्करी व मानवाधिकार विषय पर रांची में राज्य स्तरीय सम्मेलन, न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। और बोकारो के कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट में राज्य के तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, 3 कांस्य पदकों पर जमाया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चतरा संवाददाता।
1: आकांक्षी जिले चतरा में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपायुक्त रवि आनंद ने विकसित भारत के साथ विकसित चतरा के संकल्प को साकार किए जाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि
2: आज का दिन भारत के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। स्वतंत्रता केवल हमारे अधिकारों का उत्सव नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता का भी स्मरण है। विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम जनमन के अंतर्गत 715 पीपीटीजी लाभुकों को आवास का लाभ दिया गया। अगुआ आवास योजना के अंतर्गत भी हजारों लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया गया। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार आवास और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे,
3: कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, प्रत्येक परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, किसानों की आय एवं उत्पादकता बढ़े, युवाओं को कौशल एवं रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं की भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़े, पर्यावरण एवं जल संरक्षण जन आंदोलन बने, प्रशासन पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेह और जन केंद्रित बने। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए संविधान का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे और चतरा को झारखंड के अग्रणी जिले में स्थापित करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर फल्गु नदी के चतरा स्थित उद्गम स्थल को पुनर्जीवन देने को मंजूरी दी है, जिसमें नदी के पर्यावरणीय संकट को दूर किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर चतरा जिले में वन पट्टों का वितरण किया गया। वहीं ग्राम सभाओं के माध्यम से चयनित योजनाओं को डीएमएफटी की राशि से पूरा करने की घोषणा करते हुए उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि
4: जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, कोई भी व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित न रह जाए, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध प्रयासरत है और जल्द से जल्द इस क्षेत्र का भी हम लोग विकास अच्छे से करेंगे। जो भी योजनाएं हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त होगी उसको डीएमएफटी मद से हम लोग सैंक्शन करेंगे और जल्द से जल्द उसको धरातल पर उतारेंगे।
1: कृषि विज्ञान केंद्र चतरा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से जिले में घास जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों और आम लोगों को गाजर घास के दुष्प्रभाव और नियंत्रण के प्रति जागरूक किया गया। इधर चतरा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर अवैध व्यापार की रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है। चतरा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक के मादक पदार्थों के

0: पकड़े जाने पर जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि
1: बिहार के रास्ते होकर बगरा मोड़ होते हुए जो कि हम लोग के चतरा जिला अंतर्गत पड़ता है, पंजाब में अफीम की तस्करी ट्रक के माध्यम से भारी पैमाने में की जानी थी। रांची के जो देवड़ी मंदिर के पास में बुंडू तमाड़ एरिया है, वहां से इन्होंने ट्रक में 85 बोरा डोडा लोड किया था और पंजाब और हरियाणा के राज्यों में इनकी पूर्ति की जाती थी और वहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में दे देते थे जो छोटे छोटे लेवल पे सप्लाई करता था।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने में चतरा जिला राज्य में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। जिले के 22,556 किसानों ने अब तक बीमा योजना का लाभ प्राप्त किया है। वहीं 25,460 किसानों ने इसके लिए आवेदन दिया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा।
2: अभी आप सुन रहे थे चतरा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में सबसे पहले हम सुनवाते हैं फिल्म धूम का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमेरखंड अब से अभिजीत ग्वांडकर, राहे सरिता ग्वांडकर, सिद्धांत ग्वांडकर और बंटी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश ग्वांडकर, वैशाली ग्वांडकर, कुमारी ध्वनी ग्वांडकर और परी, भाटाबारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, न्यू कॉलोनी निमडी से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीस, आंस, आंसु, अमित और मुन्ना। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धूम का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दिल चाहता है, श्रीनिवास महादेवन, शान और केके की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, कोलू काकू।

जी एस रामगढ़िया। लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश विनय ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव, रितेंद्र कुमार ध्रुव। ग्राम खेड़िया घर प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रु, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी और जयमणि जयंती। चलें सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल चाहता है का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है दिल से। सुखवीतर सिंह और सपना अवस्थी की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, संगीत है एआर रहमान का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, आसमा सालिया, शुएब खान, पुत्रा मुजताफा खान, राव फाइज, शहीद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा को, सुनीता देवी, उमा कुमारी, गीता देवी, रीता देवी, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, शुभम गोप, सुमित गोप, विक्की गोप, सरस्वती देवी, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप और आराध्या कुमारी। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमेदखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर है, श्रीमती सरिता ग्वांडकर, प्रिंस एकांश ग्वांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वांडकर, प्रणीता ग्वांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश ग्वांडकर, श्वेता, सुमित ग्वांडकर, कुमारी ध्वनि ग्वांडकर उपरी और लाडला टुक टुक। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल से का ये गीत।

0: सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: స్వయం ఇది కట్టుపడే భారతీయ సేన.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका फिर से स्वागत है. आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ.

अब अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दिल मांगे मोर। के और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है हिमेश रेशमिया का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सेंटुला चाईबासा से भोला राम मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, क्रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी, गोपाल महली, साजीव सोरेन, करीना महली और एनएस महली। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनाते हैं फिल्म दिल मांगे मोर का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म मोहरा का। इस गीत को आवाजें दी हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। बीजू शाह का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं टाटा नगर गीता जी से चंद्रमोहन पात्रो, युवराज पात्रो और शिवान पात्रो। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अभिया नाज, शाहिन नाज, नूरी नाज, बच्चू शेख, चिना शेख। कोकिलवारा जिला औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख, नुजहत जहां नाज। कांति निकेतन राजनगर से कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। पुणे से पंकज बोड़ोदे, आर्या आदि, बीटी बोड़ोदे, चंद्र प्रभा बोड़ोदे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, लितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज और बिट्टा बजाज और साहिल। चलिए इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मोहरा का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं इनके पसंद पर गीत। बरका काना से अफजालताज, शाहिन सुल्ताना, मुंबई से महेंद्र मोदी, राजा बाबू, सहावा टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डूनाव से वलीउल्ला अंसारी और अस्मा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिबा, सारिमपुर बक्सर से आर राज, एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुल फराज भागलपुरी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मस्ती करके गीत शान और स्नेहा की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है आनंद राज आनंद का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म बेताब का ये गीत, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बाबू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा। ग्राम गैलिया लोहर से गोमल बेसरा, बसंती, रमेश, वनमाली बेसरा, अनु, सित कुमारी और पूजा। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। ग्राम जामठी तहसील बरोड जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर, दीमक दिनकर, विमल विशाखा कासलेकर। पंचशील रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुर जिला बुल्ढाना से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और गोपाल पाटिल। इन सब की फरमाइश पर चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म बेताब का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है जान की कसम। अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लोड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। रेलवे रोड गजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। चांडिल ग्राम हारोडे से तुलसी दास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमहिनी महतो और दीनबंधु महतो। गांव हड़ीरा से मानता राम सिंह कुंटिया। कोयडा से पोंडे बोईपाई, रैशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई और तारकेश्वर बहादा। खरसवा गांव धलाई किला से लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, गीता सोए, सरिता सोए, सिनीमाई सोए, तनुजा सोए, विक्की सोए और मनीष सोए। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और प्रियंका बंछोर। चले, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं फिल्म का नाम है गुरु। श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है सर। कुमार शानू की आवाज है, कातिल सजय के बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं शोभिक कांत झा सज्जन, हेमलता सज्जन, लक्की सज्जन, मनोज सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन, मास्टर एस के सज्जन। ये हैं जिला मधुबनी बिहार चंदा चौक अंधरथाड़ी से। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजंक्ता परांजलि, सोहम बोरगांवकर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजू दत्ता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बशनीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सर का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म मजबूर का ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पाड़वाल की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते थे बड़ा नेमरी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजिला राठौर, विशाल राठौर। अमलाटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फूलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। बोटशरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, मीमा वैवही, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। श्रोताओं, अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है तक्षक। सुजाता त्रिवेदी की आवाज़ है। इस गीत को सुनना चाहते हैं बेमतरा नयापारा से ईश्वरी प्रसाद साहू, श्रीमती भावना साहू, नीलेश कुमार साहू और कुमारी श्रद्धा साहू। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेहराज जहां, ये हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, गांधी चौक पंजाब से, रोपड़ से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जितेंद्र बीरक और मीका बीरक। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर देवे, रमाताई डोंगर देवे, सीमाताई डोंगर देवे, रीमाताई डोंगर देवे, दीक्षाताई डोंगर देवे, राहुल डोंगर देवे। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। छोटा निमडी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रितिक कुमार, कोमल कुमारी, रोहन कुमार। चलिए, इन सब की परमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तक्षक का ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा भी यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, बरसात के गीत का आनंद आपने लिया, आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव हमें इस पते पर जरूर लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। सावन की ये अंतिम सोमवारी थी, तो आप सबको सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और सावन के महीने का आनंद आप बारिश के गीतों से यूं ही लिया कीजिए। तो अब छवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
1: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

0: बाद अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश

0: स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जल भराव, घरों को नुकसान और नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4
2: मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
3: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत की टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin

भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर खाब बैन अलावामी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में लगातार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मीटिंग में दोतरफा तिजारत, इक्तसादी ताउन और आने वाले आला सतही समिट्स पर तवज्जो मरकूज की गई। रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी ईआरएस मयंक सिंह भी वफ्द में शामिल थे। मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलखसूस इक्तसादी ताउन, तिजारत और तवानाई के शोबे में भारत और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात और वजीर आजम का जाती पैगाम जनाब पुतिन तक पहुंचाया। डॉक्टर जयशंकर ने बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग को मुस्बत करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई, फर्टिलाइजर और तवानाई न्यूक्लियाई ताउन समेत मुतअद्दिद शोबों में नुमाया तौर पर मजबूत हुए हैं। वजीर खारजा ने जनाब पुतिन से कहा कि वजीर आजम जनाब मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO की बिश्केक में छोटी कॉन्फ्रेंस के शिरकत के मुंतजिर हैं और वो भारत में ब्रिक्स समिट में जनाब पुतिन का इस्तकबाल करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमाओं के जरिए बाहमी तौर पर किसी मौजूद तारीख पर अपनी सालाना समिट मुनाकिद करने की तवक्को है। मीटिंग के दौरान इजहार ख्याल करते हुए रूस के सदर जनाब पुतिन ने भारत के लिए फर्टिलाइजर की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की और कहा कि रूस भारतीय किसानों और मुल्क के जरिए शोबे में ताउन करने के लिए इकदाम कर रहा है। उन्होंने इस साल भारत और रूस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में पेशरफ को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक हकीकी तौर पर सभी शोबों में ताउन कर रहे हैं जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा शराकतदारी की नौयत में वसत की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने दो रोजा दौरे पर कल मॉस्को पहुंचे। दौरे के दौरान जनाब जयशंकर का रूस के अपने हममनसब सर्गेई लेवरोव के साथ इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात के तबादले के मकसद से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल चीन के दो रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। जनाब डोवाल भारत चीन सरहदी मुजाकरात पर कल चीन में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर में चीन के अपने हममनसब और वजीर खारजा वेंग यी से बातचीत करेंगे। आज मीडिया को खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के बारे में तफसीलात बताते हुए चीन की वजारत खारजा के तर्जमान लिन जियान ने कहा कि जनाब डोवाल और जनाब वेंग सरहदी मामले समेत दो तरफा इलाकाई और बैन अलावामी ताल्लुकात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। 2020 गलवान वादी कशीदगी और मशरकी लद्दाख में लंबे अरसे तक फौजी तातुल के बाद भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात में रखना पड़ा था, लेकिन दोनों मुल्कों ने उस वक्त से अब तक बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों को नसीहत की है कि वो तैनाती के अपने अपने मुल्कों में बुनियादी सतह पर मसरूफ अमल रहें और मुकामी बिरादरियों के साथ भारत के ताल्लुकात को वसत दें। इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के 2025 बैच के 50 IFS ऑफिसर ट्रेनीज से आज सेवा तीर्थ में बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो रिवायती सिफारती हलकों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क को फरोग दें और लोगों के साथ अपनी मसरूफियात को बढ़ाएं। वजीर आजम ने भारत की तहजीबी कुव्वत को टेक्नोलॉजी, इख्तरा और मौसर बातचीत से मरबूत करते हुए भारत की आलमी मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भी ऑफिसर ट्रेनीज की हौसला अफजाई की। वजीर आजम ने ऑफिसर ट्रेनीज से कहा कि वो दुनिया के साथ भारत की इक्तसादी मसरूफियात में तामुली अनासिर के तौर पर काम करें। जनाब मोदी ने ऑफिसर ट्रेनीज से दरख्वास्त की कि वो भारत की सकाफती, तहजीबी और जुग्राफियाई कुव्वत का मुजाहरा करते हुए मुल्क को ज्यादा पुरकशिश आलमी सियाहती मकाम बनाने के लिए काम करें। वजीर आजम ने दुनिया भर के नौजवान अफराद की भारत में दिलचस्पी जगाने के लिए भारत को जानिए क्विज को फरोग देने का भी मशवरा दिया। वजीर आजम ने इस तरह की पहल को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए मस्नूई जहानत AI और गेमिंग के इस्तेमाल की भी हौसला अफजाई की। इस दौरान ऑफिसर ट्रेनीज ने अपनी तरबियत और भारत दर्शन के तजुर्बात बयान किए।

0: अक मित्र ऐप के फवायद पर रोशनी डाली। भारतीय महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद से बहुत शदीद बारिश के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने शुमाल मशरकी भारत, बिहार, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और वस्ती महाराष्ट्र में भी बहुत शदीद बारिश की पेश गोई की है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमा मौसमियात ने जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, हिमालय के तराई वाले मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में आज औसत से तेज बारिश हुई, जिससे कई मकामात पर पानी भर जाने के सबब गाड़ियों की आमदोरफ्त में रखना पड़ा और ट्रैफिक जाम के वाकयात दरपेश आए। मौजूदा मौसमी सूरत हाल के मद्देनजर गुरुग्राम के सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाह दी गई है। पानी भरने और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कॉरपोरेट और प्राइवेट दफातर को भी घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। तेज बारिश के सबब दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों में रखना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक दो बैनुल अक्वामी परवाजों समेत 14 परवाजों के रास्ते बदलने पड़े। महकमा मौसमियात ने कौमी राजधानी में कल भी औसत दर्जे की बारिश और बादल छाये रहने की पेशगोई की है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: इधर ओडिशा में शदीद मानसून की सूरत हाल के जेर असर मुसलसल बारिश के सबब कई जिलों में पानी भर गया है। पानी की सतह में इजाफा होने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। खासतौर पर जुनूबी और शुमाली ओडिशा में सूरत हाल तशवीशनाक है, जहां पानी की सतह बढ़ने और मिट्टी के तोदे खिसकने से आम जिंदगी मुतासिर हुई है और कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ओडिशा के कोरापुट में पानी भर गया है, मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरियाओं और नहरों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंद्रावती और भस्किल दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। नवरंगपुर के दरिया के किनारे वाले गांवों में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। केवंजर में कौमी शाहरा नंबर 520 पर बाराबंका घाट पर मिट्टी के तोदे खिसकने से सड़क राबता मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई मकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात आईएमडी ने ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और सैलाब के खतरे का अलर्ट बरकरार रखा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ईरान ने खबरदार किया है कि आज रात ऐलान की जाने वाली मुमकिन पाबंदियों से खित्ते में अमन नहीं आएगा। साथ ही ईरान ने किसी भी इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब देने का इंतबाह दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान तौसी अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ सख्त रद्दअमल जाहिर करेगा, जिनमें वाशिंगटन के साथ तआवुन करने वाले ममालिक को निशाना बनाने वाले इकदाम भी शामिल हैं। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी के सख्त नतायज भुगतने होंगे और कहा कि ईरान के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे पर मुजाकिरात पर तातुल के हफ्तों बाद ईरान की जानिब से ये इंतबाह दिया गया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया से नौजवान नस्ल को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने बारिश से मुतासर मैच में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारत ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। भारत की जानिब से ध्रुव जुरेल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वें भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तहत मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर खा बैन अलाक्वामी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: सवाल ये है कि क्या हमारे युवाओं के हाथ में डिग्री है, और अगर डिग्री है तो क्या उनके पास हुनर है? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर डिग्री नहीं भी है तो आप स्किल सीखकर आप रोजगार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना। और इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमने अपने दो विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारी पहली मेहमान है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती मानसी सहाय ठाकुर जी। नमस्कार मानसी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आज बुलाने के लिए।
0: और हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रशांत सिन्हा जी। प्रशांत जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: और आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं, नंबर है 0112331 0418 0112317117 0112317116 और 0112334444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं, नंबर है 9289094044। आप #AskAIR के साथ एक्स पर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मानसी जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि कौशल विकास क्या है, यानी स्किल डेवलपमेंट क्या है, और इसमें कौन सी सरकारी योजनाएं आती हैं?
1: धन्यवाद जी। सबसे प्रथम तो आपने जैसे शुरुआत की थी कि कौशल विकास वो है जो अपनी हुनर को निरंतर तौर पर तराशना और उसे बेहतर करना, इसको हम कौशल विकास कहते हैं। इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको करना आना चाहिए। केवल जैसे आपने ठीक बोला, एक होता है डिग्री लेना, दूसरा होता है वो कौशल प्राप्त करना, वो हुनर प्राप्त करना जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें हमारे मंत्रालय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं जो हैं चला रहे हैं हम लोग, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत से ऐसी योजनाएं लाई हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में अलग अलग स्तर पर आपके कौशल को कैसे बेहतर किया जा सके उस पर काम करते हैं। चाहे वो स्किल इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके तहत हम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहे हैं हम लोग 3 से 6 महीने के, साथ ही हमारे पास जन शिक्षण संस्थान है जो निचले स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे हम कौशल प्रदान करें, और वो हम लोग ये भी प्रदान करें कि वो कुछ अपने ज़िंदगी में एम्प्लॉयबल हो पाएं या कुछ पैसे कमा पाएं। और वैसे ही हमारा एक ITI इकोसिस्टम है जिसपे हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से कौशल दे रहे हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत से हमारी योजनाएँ भी हैं। तो इस प्रकार से हर स्तर पर अलग अलग लोगों के लिए उनके जरूरतों के हिसाब से हमारा मंत्रालय अलग योजनाएं प्रदान कर रहा है
0: जी। अच्छा प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे भी एक है कि जो NSDC है वो कौन सी स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत है जिसमें तुरंत नौकरी मिल जाती है?
2: जी, इसको एक परिवेश में समझना होगा। कोई भी बच्चा जब आता है तो उसकी एक कार्य क्षमता होता है, उसकी एक इंटरेस्ट होती है, वो क्या लाइफ में आगे करना चाहता है, कहाँ काम करना चाहता है। तो ये बस इस चीज़ के इसको इस तरह से सिर्फ नहीं देखा जा सकता कि कौन से सेक्टर में नौकरियाँ ज़्यादा मिल सकती हैं, इसको एक पूरी तरह से एक कंप्लीट परिवेश में देखना पड़ेगा। बट कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो कि हमारे देश में थोड़ा जॉब के मामले में अच्छे कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, रियल स्टेट है, बाकी जगह भी है, तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी नौकरियां हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग उठ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर ऑटो में, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफ़ी नौकरियां फिर हैं। हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी में, तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अच्छा नौकरियों में ग्रोथ देख रहे हैं। बट जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ इस चीज का किसी को भी अगर ये देखना है तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें नौकरियां कहाँ हैं, ये भी देखें कि वो करना क्या चाहते हैं, कहाँ काम करना चाहते हैं, किस

0: क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सब मिला जुला के देखना पड़ेगा
1: जी। और अब आइए हम अपने श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते
2: सर। मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे ये मालूम करना है, प्रधानमंत्री जी नौकरियों के लेटर बांटते हैं, सब कुछ बांटते हैं, और आप भी बहुत सारे प्रपोजल चलाते हैं, क्या ब्लाइंड के लिए प्रपोजल कोई है आपके पास?
0: भूपेंद्र जी बहुत अच्छा प्रश्न है। जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, इसमें हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं जो कि किसी एक वर्ग के तरफ ज़्यादा उसके ज़रूरतों के हिसाब से होता है। तो बीच बीच में बहुत सारे हम स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और वहाँ पे बीच बीच में ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स बने हैं प्रोग्राम के अंदर, स्कीम के अंदर, ताकि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, और साथ साथ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी पास में चलाए गए हैं, जहाँ क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, जब किसी तरह की इस तरह की शारीरिक क्षमता की बात आती है, तो ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के नौकरियों में किस तरह के लोग योगदान कर सकते हैं, और ये इंडस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह के नौकरियों में वो कैसे लोग को एक्सेप्ट करेंगे, और उस हिसाब से हम ना सिर्फ मंत्रालय इंसेंटिव्स बिल्ड कर रहा है अपने स्कीम्स में, स्पेशल इंसेंटिव्स है, और अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो भी बीच बीच में संचालित किए जाते हैं।
3: साथ में मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगी भूपेंद्र जी कि हमारा जो ITI इकोसिस्टम है, इसमें जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी ब्रेल के हिसाब से जो लर्निंग टूल्स हैं वो भी बनाए गए हैं, तो कुछ ट्रेड्स जो हैं उसमें पूरा एक लर्निंग टूल्स उनके लिए प्रदान किए जाते हैं जिसके थ्रू शिक्षण दिया जाता है।
1: मानसी जी, आपने ITI की बात करी है, तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आ जाता है PM सेतु का आ जाता है, तो ये नवीनतम योजना है सरकार की, तो इसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ये ध्यान भी दे रही है, तो ITI इकोसिस्टम को कैसे बदलेगा?
3: जी, PM सेतु एक जरिया है जिससे हमारे जो ITIs हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे ITIs बहुत ही कोर रिक्वायरमेंट्स हमारे जो होते हैं ट्रेड्स के वो प्रदान करता है, पर उसको इंडस्ट्री बहुत बार कहता था कि भाई आप जो अपने ITIs में प्रदान कर रहे हैं क्या वो रोजगार योग्य हैं, हमें और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसी सोच के द्वारा PM सेतु का ये मकसद है कि इंडस्ट्री को साथ लेकर, उद्योगों को साथ लेकर हम लोग वो ट्रेनिंग ITIs में प्रदान करें, तो इसमें भागीदारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक हमारे देश में 1000 ITIs का कायाकल्प किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्री भागीदार रहेगा, इंडस्ट्री, स्टेट और सेंटर मिलकर एक वहाँ स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाएगी जिसमें इंडस्ट्री उसको चलाएगा। जब इंडस्ट्री चलाता है तो उससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री योग्य है, क्या उसको बेहतर किया जाना चाहिए या नए ट्रेड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, उसके बारे में बात की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा व्यय किया जाएगा, एक क्लस्टर में जिसमें लगभग 5 ITIs होते हैं उसमें 241 करोड़ तक की का बजट वहाँ प्रावधान किया गया है, और ऐसे पूरे स्कीम 60,000 करोड़ की स्कीम है। इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम इन द स्किलिंग साइड प्रेजेंटली। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री का ये एक विजन है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री, ऑलरेडी हमारा वाइजैग और लगभग 8 क्लस्टर्स इंडस्ट्री को हम ला चुके हैं। वाइजैग में आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील आ गया है, जिंदल्स आ गए हैं, तो ये इंडस्ट्री पूरा होलिस्टिक डेवलप करेगा। बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, पर फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री अपनी फैकल्टी भी ला सकती है, कोर्सेज क्या हैं, क्या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लाने हैं, तो हमारे ITIs को कैसे एस्पिरेशनल और बेहतर आने वाले टाइम के लिए फ्यूचर स्किल रेडी कैसे बनाया जाएगा, ये जवाब PM सेतु लाता है।
1: बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो ये एक नारा भी है। और अब एक और श्रोता हमसे हम ले लेते हैं, शिमला से राकेश जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा ये प्रश्न

0: है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्किल इंडिया डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और हमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी राकेश जी धन्यवाद। कोटखाई ये सब तो मैं स्वयं भी जा चुकी हूँ तो मुझे पता है। देखिए सर्वप्रथम तो हमारी जो ITIs हैं हर जिले के स्तर पर भी आइडिया ये है कि उन ITIs के द्वारा जो है वहाँ बहुत से ITIs में हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं तो ग्रामीण इलाकों से उधर बच्चे आ सकते हैं और उधर अपना स्किल पा सकते हैं। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं इसमें अभी प्रशांत जी और इसके बारे में बताएंगे पर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के भी बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग जगह, उसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी प्रदान की जाती हैं। मैंने जो जन शिक्षण संस्थान की बात की जैसे शिमला में एक सेंटर है पर ज़रूरत के अनुसार उनको सैटेलाइट सेंटर्स भी ले जाकर डोर स्टेप्स के लिए जहां आवश्यकता है उधर वो भी प्रदान करते हैं। तो इसमें मैं प्रशांत जी से बोलूंगी आगे प्लीज बताने।
2: जी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं हैं और ये स्किल मंत्रालय के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। खासकर जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर्स चलाते हैं और उनका पूरा जो फोकस है वो ग्रामीण क्षेत्र ही है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ही ये स्कीम चलती है। तो जैसे मैम ने बोला जन शिक्षण संस्थान भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सेंटर्स भी दूर दराज के एरियाज में होते हैं। हर स्टेट सेंटर में एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का प्रावधान है और बाकी उसके साथ सेंटर्स हैं। आजकल पीएम विश्वकर्मा योजना खासकर जो है वो आर्टिजन्स पे फोकस्ड है, उस पर मेसनरी टेलरी फॉरेस्ट्री इस तरह के स्किल्स पे फोकस है और ये भी ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही सुविधा और स्किल्स और लोन देने के लिए ये स्कीम अभी भी चल रही है। तो आप इन तरह के स्कीम्स के लाभ उठा सकते हैं।
3: प्रशांत जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी ग्रामीण क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं की बात कर लेते हैं, यहाँ पर तकनीक से हमेशा वो सीमित रही हैं तो ऐसे में स्किल इंडिया के आने के बाद से क्या उनका मनोबल बढ़ा है या रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं?
1: जी सर्वप्रथम तो जैसे अभी कहा गया ये हमारी मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट हम सब बहुत से ऐसे योजनाएं चलाते हैं जो वहाँ जैसे पंचायत घरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जन शिक्षण संस्थानों की बात करूं तो उसकी मंशा ही यही थी कि बहुत सी महिलाएं जिनको वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होना पड़ता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, क्या उनके लिए हम एक सुविधा ला सकते हैं जहां हम उनके करीब जाकर उनकी ट्रेनिंग कर पाएं। वैसे ही DDU GKY स्कीम भी उसी मंशा से चलाई जा रही है। जन शिक्षण संस्थान में हमारे अगर आप बेनिफिशरीज देखें तो 83-84% जो है वो महिलाएं ही हैं तो मनोबल उनका इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत से हम देखते हैं हमारे बेनिफिशरीज ठीक है उन्होंने अगर टेलरिंग का ही काम सीखा तो वो घर पर वो बनाकर अपने आसपास पड़ोसियों के लिए अपने गांव में वो प्रोवाइड कर रही हैं सुविधाएं ब्यूटिशियन वाला। पर साथ ही साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मैं बताना चाहूंगी कि अब महिलाएं जो है ट्रेडिशनल ट्रेड्स तक नहीं रही हैं। आप देखिए हमारी कुछ ITIs हैं जिसमें महिलाएं ग्रामीण इलाकों से आई हैं। एक ITI जहां पर ड्राइविंग का कोर्स सिखाया जाता है,
3: ई रिक्शा तक चला रही हैं,
1: पिंक कैब्स ये सब चलाई जा रही हैं। तो हमारी महिलाएं जो हैं अब उनका मनोबल इतना बड़ा है। अगर मैं आपको एनरोलमेंट्स की बात करूंगी कि तो अब हमारे एनरोलमेंट्स इतने बढ़ गए, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो महिलाओं का है वो भी बहुत बढ़ चुका है, 41% पहुंच चुका है। तो मनोबल तो पड़ रहा है, अब हमें अपनी महिलाओं को और ऐसी सुविधाएं देनी है कि वो इन सारे योजनाओं का लाभ उठा सकें और नए ट्रेड जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स ड्रोन टेक्नीशियन सब में महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं।
3: चलिए मानसी जी हम चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी का। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
3: नमस्कार
4: और विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार।
3: नमस्ते
4: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम।
3: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: हाँ थैंक यू मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ मैं ITI से प्रशिक्षित

0: और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण आगे मैं कहाँ ले सकता हूँ, खासकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और मैं मतलब वाक्पटुता में भी थोड़ा सा मतलब अच्छा हूँ, मतलब मैं स्पीच थेरेपी मेरी अच्छी है, मैम ये जानना चाहता हूँ मैं।
1: जी रवि जी, आपने आईटीआई से प्रशिक्षण ले लिया है ये मैंने समझा आपके प्रश्न में, तो इसके बाद एक अगर आपको एडवांस ट्रेनिंग करनी है तो आप आपके पास बहुत से चीज़ें, यदि आप बोल रहे हो कि आप स्पीच इसमें भी अच्छे हो, यानी यदि आप पढ़ाना चाहते हो, आपने कुछ प्रशिक्षण लिया पढ़ाना चाहते हो, तो हमारे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जिन्होंने आईटीआई से प्रशिक्षण किया या कहीं से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है, वो यदि पढ़ाना चाहते हैं आईटीआई इकोसिस्टम में तो वो एडवांस कोर्स करके आ सकते हैं। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रेनिंग्स भी हैं जो आप एनएसटीआईज या ग्लोबल हमारे स्किल सेंटर्स हैं उधर आप कर सकते हो, और उधर उसको लेकर फिर उसके हिसाब से आगे आपके लिए और एम्प्लॉयबिलिटी आपकी बढ़ेगी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो आप ये दोनों चीज़ें जो आपको ठीक लगे वो आप उस लाइन पर आगे बढ़ सकते हो।
2: प्रशांत जी, मानसिक चिंता बता दें कि ट्रेनिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे अक्सर युवाओं का ये प्रश्न होता है कि ट्रेनिंग तो हम लोगों ने कर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो एनएसडीसी प्लेसमेंट को कैसे सुनिश्चित करता है?
3: देखिए, प्लेसमेंट्स बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम होता है। जैसे कि मैम बोल रही थी कि आप आईटीआई से निकले तो आपके पास एक ऑप्शन है, हमारी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चलती है जिसके अंदर आप अप्रेंटिसशिप के कोर्सेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि आईटीआई करने के बाद बहुत सारे बच्चे नैप्स में आते हैं और साल भर या वैसा जो भी प्रोविजन हो उसमें वो अप्रेंटिसशिप करते हैं, और चूंकि अप्रेंटिसशिप एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां पर इंडस्ट्री के अंदर होती है, तो आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनता, जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसी इक्विपमेंट पे उसी सिस्टम पे आप काम करते हैं, तो उससे नौकरियां काफी या तो जो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप दे रही है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज आपको दूसरी जगह भी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा हमारा एक सिद्ध पोर्टल है, स्किल इंडिया डिजिटल हब, अगर आप मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये जो पोर्टल है इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कोर्सेज सेलेक्ट करने के, जॉब सेलेक्ट करने के लिए, उस पर अप्लाई करने के लिए। तो आप उस पोर्टल पे जाएं और देखें कि क्या नौकरियां हैं, काफ़ी सारी नौकरियां, लाखों में नौकरियां वहाँ पे एग्रीगेट की गई हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे हम लोग कौशल महोत्सव करते हैं, अभी बेलूर घाट बंगाल में काफ़ी इंटीरियर में जाके हम लोगों ने किया, काफ़ी भीड़ जमा हुई, इसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे आए। तो इस तरह के अप्रेंटिसशिप मेलास, जॉब मेलास, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, आप उस पर नज़र रखिए, अगर आपके एरिया में हो रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं।
2: जी प्रशांत जी, सिद्ध पोर्टल के अलावा कोई ऐसा नंबर जिसमें कि हमारे श्रोता जो है आपसे संपर्क कर सकें और इसके बारे में, इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकें?
3: जी सो अगर आप सिद्ध पोर्टल पे जाते हैं तो उसका आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके पोर्टल पे भी जा सकते हैं अपने ब्राउजर के द्वारा, और आप वहां जाएंगे तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में आपको एक नंबर भी मिलेगा, ये मंडे टू सैटरडे 9 to 6 ऑपरेट करता है
2: जी।
3: इसमें 8800055555 ये नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे आपको एक फॉर्म भी खुल जाएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप वो फॉर्म भर के हमें वहाँ पे वेबसाइट पे ही सबमिट कर सकते हैं।
2: और अब एक और श्रोता रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी,
4: धन्यवाद, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि जो अनस्किल्ड यूथ है, स्किल्ड नहीं, किसी तरह के अप्रेंटिसशिप नहीं और क्वालिफाइड है, उसके लिए क्या जो है रोजगार का माध्यम?
2: रमाशंकर जी कहना चाहते हैं डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है उनके पास, तो उसमें क्या संभावना है? क्या आपके प्रश्न को सही समझ रहे हैं रमाशंकर जी?
4: जी,
2: स्किल्ड आप हैं, मतलब डिग्री आपके पास है लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है।
4: जी,
1: तो अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया, रमाशंकर जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आज हर जगह गांव में भी बच्चे ऐप डाउनलोड करते हैं, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज आप सिद्ध वाला ऐप जरूर डाउनलोड करें। जब आप उस ऐप में आगे जाएंगे तो आपका जो क्वालिफिकेशन है, यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं हैं, और फिर आपकी

0: आपका रुझान कौन से सेक्टर्स तरफ है, ऐसे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको रजिस्टर होने बोला जाएगा। उसके बाद आपके रुझान के हिसाब से यदि आप देखते हैं कि कुछ उधर अवेलेबल हैं कोर्सेज, आप वो कर सकते हैं। ये तो हुआ सिद्ध पोर्टल की बात। इसके अलावा अगर आपको अगर आपके पास जैसे 8वीं आपने पास की है या फिर 10वीं की है और आपको लगता है कि आप कुछ कौशल, आप एक हुनर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे ITIs में भी आ सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहूँगी, कुछ बच्चे जैसे आपने कहा कि अनस्किल्ड ये रहते हैं, पर कुछ बच्चे जो 8वीं पास करके भी हमारे ITIs में आते हैं, हमने ऐसा प्रावधान दिया है कि वो 10वीं का सर्टिफिकेट भी एक दो लैंग्वेज पेपर साथ में लेकर, टाई अप है हमारे मंत्रालय का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज़ के साथ, और वो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट भी लेते हैं और साथ में हुनर भी प्राप्त करते हैं। तो दो चीज़ें इकट्ठे पा सकते हैं वो लोग। तो और हुनर का कोई ऐसे एज ये नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल, हमने अभी जो भी आपको योजनाओं के बारे में बताया, आप उसमें यदि वो एज ब्रैकेट में है तो बिल्कुल आप आकर कोई भी हुनर पा सकते हैं। और स्किलिंग का ऐसे तो कोई एज नहीं होता है, आप हमारे सिद्ध पर भी देखेंगे वेरियस एज ग्रुप्स के लिए हमने प्रावधान दिया हुआ है स्किलिंग का।
1: बिल्कुल मानसी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जब चाहें कुछ नया सीख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं मानसी जी, आपसे ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बात कर ली स्किल्स के बारे में, ब्यूटिशियन है, IIT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल की यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, तो किस तरह के कोर्सेज की डिमांड है इसमें?
0: जी, आजकल बहुत बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, एक जैसे अभी प्रशांत जी ने भी बोला था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें डिमांड हमारा नेशनली नहीं, इंटरनेशनल भी है काफ़ी। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग, केयर इकोनॉमी यानी जिसमें चाहे वो चाइल्ड केयर हो या जेरियाट्रिक केयर, यानी बच्चों का ध्यान यदि रखना हो या बुजुर्गों का, उसके लिए अभी बहुत से जैसे जापान, जर्मनी, इन देशों में बहुत मांग है और हमारे बच्चे जा भी रहे हैं। तो उनके लिए हमारे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी हैं, जहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ट्रेनिंग भी करा रहे हैं अलग अलग हुनर में, जो नॉन मेडिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, फिर कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं, और भी हमारे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड भी हैं। तो इसमें हमारे बच्चे पर केयर इकोनॉमी में आजकल खास करके बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है और डिमांड भी।
1: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी एक पहल है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं वर्किंग हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है घर पे बच्चों के साथ कोई रहे या फिर आपके साथ जो बुजुर्ग रह रहे हैं तो उनके साथ कोई रहे, तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है। प्रशांत जी,
2: जी आप इंटरनेशनल मोबिलिटी में जैसा हम जानते हैं, यू नो, जो बल्क ऑफ द लेबर फोर्स फ्यूचर के होने वाली है वो इंडिया से ही जाएगी, और इसका डिमांड बहुत ही तेजी से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और एक बहुत ही यू नो डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ केयर में ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा है, हॉस्पिटैलिटी में ज़्यादा है, इस तरह के सेक्टर्स में ज़्यादा है। बट अभी मैं दो तीन दिन पहले ही SIIC मैम ने बोला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गुवाहाटी में था, और वहाँ पे मुझे बच्चे जर्मन ट्रेनिंग करते हुए मिले, और उसमें फाइनेंस के भी बच्चे थे, नर्स भी थी, उसके बाद कुछ बच्चे थे जो हॉस्पिटैलिटी में जा रहे थे। तो वो लोग गुवाहाटी और आसपास के एरियाज में, बहुत लोग आसपास के स्टेट से आके गुवाहाटी में रह के लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी, अगर जिन लोगों को विदेश में जाके एक करियर बनाने की इच्छा है उसके लिए SIIC और NSDC इंटरनेशनल और इस तरह के जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जुड़ें, क्योंकि एक स्किल्ड माइग्रेशन, लीगल माइग्रेशन जो कि सही ढंग से माइग्रेशन हो और अच्छे नौकरियों में जाएं, ये इस तरह के रास्ते जो हैं ज़्यादा सुनिश्चित करते हैं।
1: जी, और अब एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से, संजीव जी। जी संजीव जी।
3: जी नमस्कार आप सभी को।
1: नमस्कार
3: जी, मैंने कोर्स किया मैडम जी DDUGKY में यहाँ यमुनानगर से, और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा जी? तक ना तो कोई जॉब मिली, ना एग्जाम होया और ना सर्टिफिकेट मिला जी, बैटरी ट्रेनिंग का कोर्स किया और ड्रोन।
1: संजीव जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से बताइएगा आपने किस चीज का कोर्स किया है?
3: जी DDUGKY में बैटरी रिपेयरिंग का कोर्स किया।
1: बैटरी रिपेयरिंग,
3: हाँ जी।

0: दे रही हैं, क्योंकि ड्रोन का एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो अगर आपने खुद का काम करने का पता नहीं आपने कोई संभावना तलाश की है कि नहीं की है, अगर आसपास आपकी नौकरी नहीं है तो आप एक बार ज़रूर इस बार इन संभावनाओं को देखें कि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं किसानी में या फिर किसी और तरह के क्षेत्र में जहां ड्रोन का एप्लीकेशन है।
1: प्रशांत जी, आपने स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न आ जाता है इसमें पैसों का, कि स्टार्टअप अगर हम लोग शुरू करें तो हमारे पास पैसे हैं कि नहीं है, तो इसमें क्या सरकार किस तरह का लोन प्रोवाइड करवाती है?
0: जी, इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम हो रहा है।
1: जी
0: जैसे कि आप सबसे पीएम विश्वकर्मा योजना जो एमएसएमई की स्कीम है, उसकी स्किलिंग एमएसडी के थ्रू हम एनएससीसी में करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब आप बेसिक स्किलिंग हो जाती है तब आपको लोन मिलता है, और अगर आपने लोन लेके उसका किश्त जमा कर दिए तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग मिलती है, उसका डबल 2-2.5 लाख रुपए का लोन मिलता है।
1: जी
0: तो ये आपकी विश्वकर्मा स्कीम में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनको लोन देने का प्रोविजन है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन का प्रोविजन रहता है।
1: जी और अब अंत में चलते चलते एक और प्रश्न हम ले लेते हैं छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से विभूति शर्मा जी का। जी विभूति जी,
2: नमस्ते सर, मैं विभूति शर्मा, सभी आपके टीम को नमस्कार, आपने मेरी बातों को सुना। जैसे कोई दृष्टिबाधित है, महिलाएं हैं, तो ऑनलाइन कुछ घर बैठे ऐसे पैसा कमाने का कोई जरिया है क्या, और ऐसा कोई स्किल है, और दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से स्किल चलाए जा रहे हैं?
1: ऑनलाइन कोर्स के बारे में समय कम है तो इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ी सी इसमें आप बता दीजिए।
0: जी, इसमें कुछ दिनों पहले जैसे मैं बता रहा था, मैं एक CII का सेंटर है बॉम्बे में, वो लोग एक करियर काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं, और पूरा का पूरा सेंटर का जो मैनेजमेंट है 3 या 4 दृष्टिबाधित व्यक्ति उसको पूरा का संचालन करते हैं। मैं खुद उनसे मिला हूँ, और बहुत ही सक्षम रूप से वो काउंसलिंग सेंटर वहाँ ऑपरेट कर रहा है। जो ये दृष्टिबाधित 3-4 लोगों की टीम है जो उसको बहुत सक्षमता से चला रही है। तो मैं ही बोलूँगा कि इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज संभावनाएं हैं जो कि अलग अलग स्कीमों के तरह आप उसको उसकी लाभ उठा सकते हैं।
1: जी मानसी जी, अंत में चलते चलते हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि स्किल इंडिया 2026 के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं, तो अपने श्रोताओं से क्या आप अपील करना चाहेंगी?
3: जी बिल्कुल, स्किल इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सभी लोगों को जिनके पास हुनर है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं उस हुनर को शोकेस करने का। तो मैं आप सभी श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं, प्लीज़ रजिस्टर करें और प्लीज़ अपने हुनर को आजमाएं, और इससे फिर जो जीतेंगे वो आगे भी जाते हैं, आगे के स्किल्स वर्ल्ड स्किल्स चैंपियनशिप में भी जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो चीन की शंघाई होने वाली है
3: 15 सितंबर तक हमारे रजिस्ट्रेशन खुले हैं, तो आप लोग प्लीज आए और रजिस्टर करें।
1: तो इसके साथ ही आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए फरहत नाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
3: नमस्ते।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, आपको हम सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। गजलों के कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम पेश कर रहे हैं पंकज उधास के स्वर में चंद गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला हम शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इन्हीं गजलों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म सौतन की बेटी का ये गीत, अनुराधा पाटवाल और किशोर कुमार की आवाजों में। सावन कुमार के बोल हैं, संगीत है वेदपाल का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है रोटी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है चालबाज। अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अगला गीत हम पेश कर रहे हैं फिल्म लगान से। अलका याग्निक, उदित नारायण और सुखविंदर सिंह की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। चंद बारिश के गीतों का आनंद आपने लिया। अब इस कार्यक्रम से मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन

0: तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
3: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
2: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representative talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representative talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia